0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

हे शिवानी तू लगती है नानी, बनेगी कब रानी। हे हे शिवानी।

0: एक पके माटी के पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित उष्ण पर प्रधान हो तो काकशेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शबीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

आपके घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आया कुछ ख्याल ऐसा जो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जरा गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कर ले पहले, फिर हम हमारे ख्याल आपके साथ शेयर करेंगे। वो कुछ ऐसे हैं कि देखिए, अक्सर आई कम अक्रॉस सम गुड कोट्स और बहुत सी अच्छी लाइंस जो ज़रूरी नहीं है कि वो ज्ञान के तौर पर आप तक पहुँचे, लेकिन कभी कभार कोई एक ऐसे शख्स होते हैं हु हैज़ टू लिसन टू सच लाइंस एट द राइट टाइम। उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे फेजेस चलते होते हैं कि दे जस्ट नीड टू लिसन, वो यूनिवर्स के साइंस जो होते हैं जो आफरीन के ज़रिए भी शायद आ सकते हैं, जो आज का ख्याल कुछ इस तरह से कि अगर आज का दिन आपको ऊपर वाले ने दिया है ना, तो वो बस इसी उम्मीद से दिया है कि आपने जो कल गलत किया था वो आज सही करे। मतलब आगे का नहीं सोचना है, हम हमेशा कहते हैं कि भाई आज में जियो, आज में रहो, एंड लुकिंग एट द अनसर्टेनिटी इन द एंटायर वर्ल्ड, भाई आज है वही आज आपका गिफ्ट है। लेकिन कल इसलिए होता है कि कल की कीवी कोई भी गलती जो होती है उसे सही करने के लिए आज होता है। सो आज का जो दिन है माय दोस्त, ऐसी कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हो, जो सही करना चाहते हो, सो टेक दैट लीप ऑफ फेथ राइट नाउ। यू माइट जस्ट वॉन्टेड टू हियर दिस फ्रॉम समवन, तो हियर इट इज। माइक से दिल तक आपकी आफरीन, स्वैग से आपका स्वागत करती हुई राइट ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: हाँ, बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: Oh my God.
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम, प्रॉब्लम
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजूं?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुची पुची कुची पुची. ओके स्वीटहार्ट बाय। हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
1: गोलगप्पे नहीं होते मैम हमारे यहाँ।
2: चकोर दे दीजिए, गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो।
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं।
1: क्या खाते मैम?
2: मुर्गा
1: मैम, वो भी नहीं है।
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए।
3: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखिए वो नहीं देखते हम सोशल मीडिया पे, ट्रांजिशन रील्स, मेकओवर रील्स, ऐसे ही कुछ हुआ है हमारे कतर के नोट के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज की गर्मा गर्म खबर में क्या है देखते हैं।
1: खबर कतर,
0: देखिए खबर ऐसी है दैट कतर सेंट्रल बैंक ने फिफ्थ सीरीज के यानी 5, 10 और 50 रियल नोट्स में कुछ डिजाइन अपडेट्स अनाउंस किए हैं। अब इन नोट्स पर आपको अपडेटेड स्टेट एम्ब्लम, अरबिक न्यूमरल्स और इशू डेट नजर आएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास पुराने वाले नोट्स है तो पैनिक बिल्कुल मत करिए भाई, वो पूरी तरह से वैलिड है और सर्कुलेशन में रहेंगे। मतलब ना बैंक भागने की जरूरत है, ना वॉलेट क्लीन अप कैंपेन शुरू करने की जरूरत है। और ये सोचकर आपको कहीं कुछ डेजा वो तो नहीं हो रहा है, नहीं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपको आपके नोट्स बदलने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके जो 5, 10, 50 नोट्स बिल्कुल वैलिड रहेंगे। लेकिन जब नए नोट्स अब आपको मिलेंगे ना, तो थोड़ा सा जरूर देखना कि अरे अब ये वाला नया है, इसमें ये चेंजेस आए हैं, ऐसा कुछ। वेल, अगर आपने नोटिस किया होगा, कतर क्वाइटली बट कंसिस्टेंटली अपने सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करता रहता है। अब वो चाहे डिजिटल सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्ट हो या करेंसी की डिजाइन, दैट्स आवर कतर फॉर अस। फिलहाल के लिए तो आप फ्री हैं आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड विद मी माइक सुदुल्ता का ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: फिलहाल तो जोग्राफिया हमारे खतर का बदल रहा है, गुस्सा किया भी बहुत कर रहा है ये सूरज चाचू, और माफिया भी नहीं मांग रहा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और भाई वक्त हो चला है, जरा वेदर का हालचाल देखे।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट, वेल वेदर तो लगभग कल की तरह ही लग रहा है मुझे। 45 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम चल रहा है आज का दिन, 33 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होगा रात के वक्त पर। अभी राइट नाउ जो महसूस कर रहे हो आप 34 डिग्री सेल्सियस है। और जैसे मैं कहती हूँ ना कि यार ह्यूमिडिटी अभी तक अपने पूरे चरण पर आई नहीं है, इट्स एट 27%, हल्की हल्की सी हवाएं भी चल रही है, 11 किलोमीटर पर आवर पर है। ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से अभी तक तो सब ठीक है यार, मतलब चंगा सी आई फील वेदर जो है काफी हद तक बेरेबल है। दोपहर के वक्त पर सारे लोग घर पर और ऑफिस में होते हैं जब थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा गर्मी अपनी दिखाता है, लेकिन उसके अलावा अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर रियली गुड, है ना यार, हर चीज में अच्छाई देखना जरूरी है।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी, अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
0: Meanwhile, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
3: ऑफ कोर्स, कस्तो मजा, परिणीता से, और शिलीगुड़ में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
2: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वेल रॉकस्टार मूवी का ये जबरदस्त गाना राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स आफरीन चुन गई है आपके साथ। चलिए, बहुत से लोग अब स्कूल की तरफ जा रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स, तो खबर कुछ एजुकेशन से जुड़ी हुई बता दें आपको।
1: क्या खबर कतर?
0: देखिए, खबर कुछ ऐसी है दैट कतर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नया अमेंडमेंट अप्रूव किया है, जिसके बाद अब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले कुछ और कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें टेक्स्ट बुक और ट्रांसपोर्टेशन फीस में एग्जेम्पशन मिलेगी। अब तक ये बेनिफिट लिमिटेड कैटेगरीज को मिलता था, लेकिन अब ये जो बेनिफिट है, दिस इज फॉर नॉन कतरी एंड ऑल्सो फॉर दो सिटीजन्स हु आर नॉट ऑफ जीसीसी स्टेट्स। ठीक है, तो ये किसके लिए है फिर? ये उनके लिए है जिनके पास कतरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट होल्डर्स है या फिर इनके पास परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड है। ठीक है, तो ये इन दो कैटेगरीज को इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है ना। इन अदर वर्ड्स आई वुड से कि यार, ये सिर्फ एक फी एग्जेम्पशन नहीं है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल डन बाय द कतर गवर्नमेंट। तो ये अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी होल्डर है या फिर आपके आसपास की ऐसी कोई फैमिली है जो इस कैटेगरी में आती है, दिस न्यूज इज डेफिनेटली फॉर देम कि अब से इन्हें टेक्स्ट बुक और ट्रांसपोर्टेशन फीस में एग्जेम्पशन मिलेगी एंड दिस इज फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स। ये थी आज की खबर आफरीन की तरफ से। माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
2: Well, मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7 बजे की तरफ. यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड. कमिंग अप नेक्स्ट वायरल गाना करण औजला की आवाज में बॉयफ्रेंड ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: That is Hardy Sanu और स्वास्ती मेहुल की आवाज में. एंड अब मैंने ये गाना ध्यान से सुना तो यार स्वास्ती की आवाज तो अच्छी है, और गाने क्यों नहीं आए इनकी आवाज में. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और चलिए इट्स टाइम फॉर सम न्यूज़ टाइम.
1: क्या खबर कतर?
0: देखिए खबर कुछ ऐसी है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कतर में पैदा हुए कुछ नॉन कतरी यंगस्टर्स के लिए अब एक नया दरवाजा खुल गया है, तो अच्छा खबर कुछ ऐसी ये भी है दैट कतर ने एक ऐसा डिसीजन अनाउंस किया है जो सिर्फ एक पॉलिसी अपडेट नहीं है बल्कि कई लोगों के लिए एक पाथवे ऑफ पॉसिबिलिटी बन सकता है. देखिए अब तक नेशनल सर्विस को हम अक्सर सिर्फ कतरी सिटीजन से जोड़ते थे, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने रिक्रूटमेंट के लिए 3 नए कैटेगरीज इंक्लूड की है. पहली कैटेगरी में वो आते हैं वो जो कतरी नेशनल्स हैं जो मैंडेटरी सर्विस के दायरे में नहीं आते थे, अब वो भी आने लग गए हैं. लेकिन उसके अलावा दूसरी कैटेगरी कुछ ऐसी है जो नॉन कतरी रेसिडेंट्स जो कतर में पैदा हुए हैं और नॉन कतरीज बॉर्न टू कतरी मदर्स, ये दूसरी और तीसरी कैटेगरीज है. समझ रहे हैं ना आप, ये भी आप नेशनल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ. एज जनरली 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. वैलिड QID, मेडिकल फिटनेस, सिक्योरिटी क्लियरेंस, पर्सनल इंटरव्यू और एम्प्लॉयर का या फिर स्पॉन्सर का NOC जरूरी होगा. ठीक है, अब मेरी नजर में यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. अलाउंस है जो 3,000 कतरी रियाल से शुरू होती है पहले साल में, और 5वें साल तक ये 7,000 कतरी रियाल तक भी पहुंच सकती है. अब इसमें बड़ा पिक्चर क्या नजर आता है मुझे, दैट इज परमानेंट रेसिडेंसी एलिजिबिलिटी. यस, अगर सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के रिक्रूट्स एक्टिव सर्विस सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो उन्हें परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है. क्या बात है. और दोस्तों इस खबर को सिर्फ मिलिट्री रिक्रूटमेंट की तरह मत देखिए, इसके पीछे काफी पावरफुल मैसेज छुपा है दैट कतर में ऐसे हजारों यंगस्टर्स हैं, यंग लोग हैं जो यहीं पैदा हुए हैं, है ना, यहीं स्कूल गए हैं और यहीं से उनकी बिलोंगिंग है. उनका इमोशनल कनेक्शन इस मुल्क से किसी लोकल से कम नहीं है. तो ये डिसीजन उन लोगों के लिए कह रहा है दैट इफ यू आर विलिंग टू सर्व यू कैन बिकम अ डीपर पार्ट ऑफ द नेशंस हिस्ट्री. वेल, मैं हूं आफरीन आपके साथ, और बस इसी एक स्ट्रैटेजिक मूव कतर की तरफ से ये खबर लेकर आई हूं राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स. माइक से दिल तक बने रहिएगा और मिर्ची इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga.
2: Hello?
3: Hello, Sunil ji.
2: Haan ji.
3: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं.
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
2: वेरी गुड यार.
3: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
2: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
3: हाँ जी.
2: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
2: कंडीशन वगैरह?
3: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना. अपने कोई ज्यादा
3: बस सर बिल्कुल फ्री है. पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
2: क्या?
3: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
2: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला है.
2: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
3: सर पुराना जो आपने
2: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो तो
3: सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
2: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
3: अरे अरे तो ये क्या
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
2: पेट्रोल फालतू का. अच्छा. पुराना
3: लाओ,
2: नया ले जाओ, ये ले जाओ.
3: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

0: Maika.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अच्छा, हमारे बचपन के समर वेकेशन याद है आपको? वो दिन जब घर में कूलर चल रहा होता था, कजिन्स पूरे घर में धूम मचा रहे होते थे और किचन में एक बड़ा सा डब्बा रखा होता था जिसमें आम ठंडे पानी में डुबोए जाते थे। यार सच कहो ना तो हमारे जनरेशन के लिए समर का मतलब सिर्फ हॉलीडेज नहीं था, है ना? समर का मतलब था मैंगो सीजन, वो आम रस, वो मैंगो शेक, आम पन्नाए और मम्मी की वार्निंग, अरे एक साथ इतने आम मत खाना, है ना, बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी। और मुझे अच्छा लगता है कि कतर में ना हमारे बच्चे भी वही नॉस्टैल्जिया, वही मैंगो मैजिक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बल्कि और भी बड़े स्केल पर, क्योंकि 18 से लेकर 27 जून तक सूक वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में लगने जा रही है इंडियन मैंगो एग्जीबिशन। यस, इट्स बैक एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपको मिलेंगे इंडिया के डिफरेंट वैरायटीज के मैंगोज, मैंगो जूस, शेक्स, पेस्ट्रीज, केक्स और मैंगो इंस्पायर्ड ट्रीट्स। मतलब ऐसी ऐसी मैंगो की पकवान होते हैं ना वहां पर दैट यू एक्चुअली कैन नॉट इमेजिन। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है दैट इंडिया में ऑफिशियली 1000 से ज्यादा वैरायटीज के मैंगोज पाए जाते हैं। डिड यू नो दैट हर रीजन का अपना सुपरस्टार होता है? कहीं पर अल्फांसो रत्नागिरी का है वो केसर, लंगड़ा, दशेरी, चौसा और बहुत कुछ। वैसे आप मुझे बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हो इंडिया में और वो कौन से मैंगो के प्रकार है या टाइप है जो आपके यहाँ पर फेमस है। 5000 1896 इज माई नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, अपना मैसेज भेज के बताइए कि भाई आपको कौन सा मैंगो का टाइप पसंद है या फिर आपके यहाँ पर कौन सा मैंगो का टाइप मशहूर है। तब तक के लिए माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची इट्स हॉट।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: विद्या बालन आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
2: ऑफ कोर्स कस्तो मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
1: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: कुछ शाहिद मालिया की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची साथ देते हुए जॉनिटा गांधी हाँ जी वक्त हो चला है कि चलो सारे बॉलीवुड के फैंस एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं और वो क्यों क्योंकि यार लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेलना है कि नहीं और देखो आज भी ना डायलॉग तो पॉपुलर सुन के आई हूँ लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि यार नाम याद नहीं आता है बहुत पॉपुलर डायलॉग है सुनो तो आप जानो
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट
2: ये मजदूर का हाथ है कातिया लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं
1: All right, we all know who is saying this dialogue. Yeah, no brownie points for that. लेकिन कौन सी मूवी है ये 5000186 is my number. फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाइए And I know it, यार बहुत से लोगों को दो तीन मूवी के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है कोई ना जो भी मूवी आपके जहन में आ रही है फटाफट से मैसेज करके बताओ मुझे 5000186 इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का और ये भी देख रही हूँ कि बहुत लोग सोच में पड़ गए हैं और बहुत लोग फटाफट से आंसर भी दे रहे हैं ना मैं नाम लिखो ना ये नंबर क्या है 6683 एंडिंग आपका नाम जरूर लिख लेना ठीक है जब भी आप आंसर करते हो मीनवाइल अगला गाना सी स्कोर और यासिर देसाई की आवाज में राइट हियर माइक सिदिल तगाफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
1: उससे भी ज्यादा।
0: लॉटरी लग गई?
1: उससे भी बड़ा।
0: तो फिर बताओ।
1: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
2: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
3: अर्ज किया है
4: इरशाद। इरशाद

0: देखो मेरा भी सवाल इतना सा है और आसान भी है यार। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्टरनून का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए सवाल जवाब का सिलसिला तो इस वक्त पर चलता ही है हमारा, जहां पर मैं आपको एक डायलॉग सुनाती हूँ और आपने बस गेस करना है कि आखिर ये कौन सी मूवी से है। और देखो आपके कहने पर ही ना मैं ऐसे ढूंढ कर ला रही हूँ डायलॉग, और आज का डायलॉग आसान तो है, सुना सुना सा भी है, लेकिन मैं भी आपकी जगह रहती ना तो दो तीन मूवीज के नाम में कंफ्यूज हो ही जाती। चलिए सुनते हैं कौन से डायलॉग की बात हो रही है आखिर।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं।
0: लेकिन मुझे आपके जवाबों की जरूरत है ना। बताइए कौन सी मूवी की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर किसी ने घायल मैसेज किया है, कोई जीत मैसेज किया है, कोई जेल मैसेज किया है, लेकिन एक्चुअल क्या जवाब है, लेट्स हियर इट आउट।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: मेरा नाम आरिफ खान है, इस फिल्म का नाम है घातक।
0: ऑल राइट।
4: हेलो मैडम जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।
4: मूवी घातक है मैडम, घातक माय फेवरेट मूवी। आई लव मिर्ची, इट्स हॉट।
0: थैंक यू
4: फ्रॉम पंजाब।
5: हेलो गुड मॉर्निंग आफरीन।
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
5: मेरा नाम देवा है।
0: हाँ जी।
5: अभी जो आपने डायलॉग सुनाया था घातक मूवी का है और सनी देओल ने बोला है।
0: That is absolutely right. Thank you so much आपके जवाबों के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज आया है राइट नाउ, मनाली का मैसेज आया है, मौसीम का मैसेज आया है, चीनू का कहना है कि घायल है। चीनू आई अग्री विथ यू, मतलब मैं भी रहती तो यही मैसेज करती जरूर, मुझे भी नहीं पता ये मूवी। विल्मा का मैसेज आया है, देन आई हैव रिजाउल हुसैन, अरबाज, मोहम्मद नदीम, नौशाद अली, कमाल, एंड यस द लिस्ट गो जोन एन ऑन एन ऑन। और ये कौन है भाई, कतर कूल? नहीं भाई, ना हम नहीं लिखते हो तो फिर मैं कैसे आपका जवाब दूं यहाँ पर। सो वेल, घातक इट इज सनी देओल का ये फेमस डायलॉग, और वो सनी देओल का एक एरा था वो टाइम पर 90s में, एंग्री यंग मैन मेरे ख्याल में जो हमारे 90s के थे वो सनी बाजी थे, वो 70s 80s के हमारे अमिताभ बच्चन होंगे, लेकिन उसके बाद में आए सेल्डम, बहुत रेयरली देखा मैंने सनी बाजी को रोमांटिक किरदार में, है ना। वैसे नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ सनी पाजी, इसलिए ज्यादा उनकी मूवीज देखी नहीं है। वैसे डू वी हैव एनी फैंस ऑफ सनी देओल, लेट मी नो। मीनवाइल यस, अब मुझे भी कुछ ना कहना है और बस ये गाना सुनाना है, बिकॉज इट हैज आवर 90s नॉस्टैल्जिक टच टू इट। एंजॉय दिस ट्रैक, माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाओ।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।
2: रुक, रुक।

क्या आप जानते हो ये गाने में 400 किलो सोना लग गया था? देखिए बॉलीवुड में गाने सिर्फ सुने हैं देखे नहीं जाते हैं, कभी कभी उन पर इतना खर्च होता है कि पूरी लग्जरी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और यस, बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे गाने के बारे में जिसमें करोड़ों रुपए लग गए थे, इनफैक्ट 400 किलो सोना भी लगा था, एंड दैट वॉज पद्मावत का आइकॉनिक गाना घूमर, श्रेया घोषाल की आवाज और स्वरूप खान की आवाज में, एंड फीचरिंग वन एंड ओनली हमारी दीपिका पादुकोण। यस, कहते हैं इसकी प्रोडक्शन में लगभग 400 किलो सोना, ज्वेलरी, रॉयल प्रॉप्स और ग्रैंड सेट्स के लिए यूज हुआ था, और दीपिका पादुकोण का वो रॉयल लहंगा उसका वजन करीब 30 किलो था। यस, देखिए गाना हिट होना सिर्फ पैसों से नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो एक्सपेंसिव गाना सुपर हिट ही होता। घूमर याद रह गया है क्योंकि उसमें क्राफ्ट्समैनशिप थी, ऑथेंटिसिटी थी, और संजय लीला भंसाली का वो सिग्नेचर ग्रैंडर था। वेल, बॉलीवुड में ऐसे कई सारे गाने बने हैं जिस पर बहुत सारा खर्च हुआ है, लेकिन जब बात संजय लीला भंसाली की आती है ना, तो ही डज नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, एंड दैट इज घूमर विथ ऑल इट्स ग्रैंडर एंड रॉयल्टी, कमिंग अप नेक्स्ट राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mr. Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La vidva la murga.
1: Milci, murga. हेलो
2: हेलो नवनीत नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
1: हाय नवेद,
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
2: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
2: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
1: हाँ?
2: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
1: मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
2: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
1: मिस्टर दिलीप।
2: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
1: मैं क्या कुछ गलत
2: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
1: अब ऐसी बात क्या
2: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: अब मैं क्या
2: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
2: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ यानी कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया।
2: अरे तो
1: तरफ से मैं माफी मांग,
2: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया है।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरे तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
1: नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
2: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
1: कुकड़ुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
5: उससे भी ज्यादा।
4: लॉटरी लग गई?
5: उससे भी बड़ा।
4: तो फिर बताओ।
5: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरीज से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम। 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, Mohit Chauhan doing his magic alongside A.R. Rahman in this song from the movie Chamkila. लेकिन फिलहाल तो मैं मैजिक थोड़ा मनी का लेकर आती हूँ. यस, यू गॉट टू ट्राई इट. इट्स टाइम फॉर आईपीके एक्सचेंज रेट्स. देखिए, आज का एक्सचेंज रेट कुछ ये कह रहा है आईपे का, दैट एक खत्री रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको इंडियन रुपीज 26.16. वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.76. बांग्लादेशी टाका इज एट 33.70. श्रीलंकन रुपीज की बात करें तो इट इज एट 92.32. एंड नेपाली रुपीज माई फ्रेंड्स इज एट 41.80. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर बेचे पैसे, ढेरों सारी खुशियां. खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन पर. माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

अरिजीत सिंह की आवाज, मुस्कुराने की वजह हर एक की जिंदगी में अलग अलग होती है, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी मुस्कुराहट की वजह बनने की कोशिश में हूँ मैं, यानी आपकी सिंपली आफरीन। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और हाजी वक्त हो चला है कि चल के जरा गेम शेम खेला जाए। यहाँ पर बॉलीवुड का गेम का टाइम हो चुका है, कहानी सुना रही हूँ। और आज की जो कहानी है ना, और ये मूवी है, ये मेरे नाना की फेवरेट मूवी है। अब आप समझ जाओ, नहीं कोई 50s 60s की मूवी नहीं है, बॉलीवुड की अराउंड 2003 की आसपास की ये मूवी है। सो द कहानी गोज लाइक दिस। एक कपल है जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया, सेटल किया। रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगा कि चलिए अब फैमिली के साथ सुकून से वक्त गुजरेगा। पर बच्चे एक फैमिली मीटिंग करके पेरेंट्स को ऐसे डिवाइड कर देते हैं जैसे प्रॉपर्टी नहीं मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान हो। हस्बैंड एक बेटे के घर, वाइफ दूसरे बेटे के घर। पहली बार सालों की शादी के बाद दोनों अलग रहने पर मजबूर हो जाते हैं। और आयरनी देख लीजिए कि जिनके लिए पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस की वही दूर हो जाते हैं, और जिसे सिर्फ प्यार दिया वही सबसे करीब आ जाता है। अब बताइए आफ्टरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है? 5000 1896। और मेरे ख्याल में यहाँ पर मेरी ये मूवी की कहानी खत्म होने से पहले ही लोगों ने इतने मैसेजेस करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर हुसैन, रोहित, और फिर ये कौन है भाई, अपना नाम लिखो तो ही मैं फटाफट से ऐसे आपके नाम यहाँ पर लिख बोल सकती हूँ। सो मीनवाइल अगला गाना आपको सुना रही हूँ यहाँ पर, तब तक के लिए आप जवाब दीजिए 5000 1896 पर, व्हाट्सएप नंबर है। विशाल मिश्रा की आवाज में ये अगला गाना इंतजार कर रहा है आपका, माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है? शाहिद कपूर। बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
3: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क इश्क ऑब्वियसली। द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन।
2: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को ब्रिजेश चंदेलिया और स्वाति शर्मा की आवाज में। ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। अच्छा, अभी जो मैंने मूवी की कहानी सुनाई है ना, ये कहानी सुनकर बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई आप टीम क्या याद दिला दिया, ये मूवी की वजह से हम पर कितना टॉर्चर हुआ है। कौन सी मूवी है ये, पहले आप ये कर लो, कहानी सुन लो और फिर आपकी भी कुछ कहानी होगी, कुछ यादें होगी इस मूवी से जुड़ी हुई। सो कहानी कुछ ऐसी है, एक कपल है जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया, सेटल किया। रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगता था कि अब फैमिली के साथ सुकून से वक्त गुजरेगा, पर बच्चे एक फैमिली मीटिंग करके पेरेंट्स को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं जैसे प्रॉपर्टी नहीं मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान हो। हस्बैंड एक बेटे के घर, वाइफ दूसरे बेटे के घर। पहली बार सालों की शादी के बाद दोनों अलग रहने पर मजबूर हो जाते हैं। और आयरनी देखिए, जिनके लिए पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस की वही दूर हो जाते हैं, और जिसे सिर्फ प्यार दिया वही सबसे करीब आ जाता है। कौन सी मूवी है ये? वेल, बहुत ही प्यारी मूवी थी यार ये। मतलब उसमें एक्टिंग जो थी मेन जो प्रोटैगनिस्ट की, बहुत अच्छी थी। लेकिन ना अपने पेरेंट्स ये मूवी देखकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए थे और इतने पर्सनल हो गए थे कि भाई तू भी मेरे साथ यही करेगा, ऐसा डायलॉग आपको भी सुनने मिला था क्या? चलिए मूवी कौन सी है पहले ये तो सुन ले आपसे।
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी, दैट इज राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
3: The story which you are telling and the name of this particular
1: Haan
3: movie
1: ji.
3: is Baagban.
1: Baagban.
3: By Ravi Chopra and the protagonist is Amitabh Bachchan.
1: That is right.
3: The solid cameo of Salman Khan.
1: Salman Khan ka cameo bhi tha, bilkul sahi.
4: Hi, this is Shafiqul Ansari. This film name is Baagban.
1: Bilkul sahi.
5: Hi, Afreen.
1: Hi.
5: This is Krishna Bahadur.
1: Haan ji.
5: The movie name is Baagban.
1: Baagban. एंड हेमा मालिनी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। आपके जवाब जो भी आए हैं, और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है भाई, आफ्ताब का मैसेज है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, जाहिर, ताहिर, रिया, मनाली, रोहित, शशि, इट इज नॉट केतरी जी, केतरी जी कैसे कह दिया तुमने। और फिर उसके बाद आई एम ट्राइंग टू रीड द मैसेज, खान का मैसेज है, और फिर हुजैब का मैसेज है, एंड मैनी मैनी मैनी मोर जिन्होंने नाम लिखे ना उनके मैंने फटाफट से नाम पढ़ लिए। सो भगवान मूवी का ये गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में, अलका याग्निक का साथ, हेमा सरदेसाई के साथ, माइक से दिल तक आफ्टरीन के साथ, अनमिर्ची इट्स हॉट।

0: emergency helpline?
1: Yeah. Hi there. What's up? Tell me.
2: Sir, computer में virus घुस गया है. क्या करूं?
1: Oh my God. आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला.
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Mornings.
2: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.
2: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
3: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
4: Well, मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 9:01. मैं हूँ आफरीन आपके साथ और वेलकम टू द जंगल का वही गाना, पुराना गाना तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है आनंद राज आनंद की आवाज रुबाई का साथ में और मिर्ची के साथ.

जानते हो जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया तो मुझे एक ही जवाब मिला कि भाई ये तो वही गाना है तोड़ मरोड़ के फिर से पेश किया गया है जो पहले वाले वेलकम में था। वेलकम टू द जंगल में भी वही डाल दिया। अरे भाई ये फिल्म मेकर्स जो है क्यों आप ओरिजिनल बना नहीं पाते हैं? क्यों आप जेंजी को मिलेनियल्स के हिट गानों से ही खुश करने की कोशिश कर रहे हो और फिर ये जेंजी कहते हैं कि भाई ये तो हमारे जमाने का गाना है। नहीं जी नहीं, ये सब हमारे जमाने के गाने हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, जिस चीज का इंतजार था वो आ गया है। मतलब हमें तो इंतजार नहीं था, हम तो इंतजार ये है कि कब ये चीज जल्द से जल्द चले जाए। वेल, गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी तो आ गई है, लेकिन माय फ्रेंड्स ये वो वाली गर्मी नहीं है जो कतर में पिछले 10-5 साल से रहते हैं उन्हें पता है। ये तो बस ट्रेलर है, ये शायद ट्रेलर भी नहीं, ये टीजर है। अब तो ट्रेलर आना बाकी है, फिर वो शदीद वाली गर्मी आनी बाकी है। लेकिन जहां इनका अब ये दिख गया है, क्या कहते हैं इसे, प्ले डिस एक्चुअल में, आई होप आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट, ये प्लेटिस स्टार एक सितारा है। जब ये नजर आता है तब से ऐसे कहा जाता है कि भाई बहुत गर्मी अब शुरू होने वाली है। कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट का ये कहना है और अगले जो दिन होंगे कुछ दिन, दे विल बी द हॉटेस्ट डेज ऑफ द ईयर। तो बस हम तो रेडी है बॉस, हमारे लिए क्या ये रोज की बात है भाई। क्योंकि यार एक बात बहुत अच्छी है कतर में कि कितनी भी चाहे गर्मी हो, यहाँ की हुकूमत ने इतने अच्छे इंतज़ाम किए हैं। पहले तो वो ड्राइवर्स के लिए जो सुबह के वक्त, यानी 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये लोग सुबह के वक्त बाहर ड्राइव नहीं करते, यानी बाइक पर नहीं जाते हैं, कार में जाते हैं। उसके अलावा हमारे आसानी के लिए इतनी सारे सड़कें हैं, इतने सारे जो हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कूल स्पॉट बनाए गए हैं, ओपन एसीज़ है, पार्क में एसीज़ है, मतलब क्या चाहिए। इतनी सुकून से कोशिश की जाती है, बच्चों को छुट्टी मिल जाती है कि ताकि वो गर्मी में आराम से घर में छुट्टियां मनाए। और फिर हम तो भाई एसी से ही बात कर रहे हैं ना, किसी दिन हमारे स्टूडियो में आके देखो भाई, यहाँ पर गर्मी के दिन में भी स्विट्जरलैंड बना होता है। आ जाइए, मोस्ट वेलकम। फिलहाल के लिए तो आपके लिए गाना यार तैयार है, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। गर्मी के सितारे के बारे में तो बात हो गई है कि आसमान में आ गया, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज रात में आसमान में आने वाली है, बताऊंगी थोड़ी देर में ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Gambana.
1: Murga, murga. La viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी।
4: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
3: या
4: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
3: हाँ, बोलिए।
4: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
3: एक्चुअली मैं 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
4: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
3: Oh my God.
4: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
3: नहीं मैम, प्रॉब्लम
4: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
3: चना दाल, चना कबूली। एरोप्लेन भेजू?
4: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
3: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
4: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
3: Hello.
4: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछी पुछी कुछी पुछी. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
3: गोलगप्पे नहीं होते हमारे,
4: चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
3: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
4: लंबे वाले
3: नहीं है वो।
4: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
3: क्या खाते हैं
4: मैम? मुर्गा
3: मैम, वो भी नहीं है।
4: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
3: मैम ये हमें नहीं पता।
4: हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
3: हाँ जी मैम बताइए।
5: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
3: आपकी आवाज में काफी
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Well, that is Guru Randhawa ki awaaz saath dete hue Kiran Bajwar, right here on Mirchi. Very good morning, Doha, and welcome back. Simply Afreen ka saath hai right here on Mirchi Mornings. Aur dekhiye bhai, aasman mein aaj कुछ होने वाला है. मतलब फायरवर्क्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ईद वगैरह हो गई है, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्लैनेट्स, स्टार्स, इन सब के बहुत शौकीन हैं. और यार बच्चों के लिए भी ये अच्छी चीज़ होती है ना कि ये एक ब्यूटीफुल सेलेस्टियल इवेंट जब देखने का मौका मिलता है तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए. सो वेल, आज आसमान में हमारे सोलर सिस्टम के दो सबसे ब्राइट प्लैनेट्स यानी वीनस और जुपिटर एक दूसरे के काफ़ी करीब नज़र आएंगे और इस फिनोमेना को एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेटरी कंजंक्शन कहते हैं. देखिए, सनसेट के बाद से लेकर लगभग 8:55 PM तक आप इसे नेकेड आई से देख सकते हैं. कोई टेलीस्कोप की भी ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है. वीनस जुपिटर के थोड़ा और ऊपर चमकता हुआ नज़र आएगा आपको. सो वेल, ये जरूर आप देखना. अगर आप देखोगे, मैं भी देखने की कोशिश करूंगी क्योंकि मैं जहां रहती हूँ ना, वहां से आसमान बड़ा खुला खुला सा नजर आता है. और अगर आप देखते हो, मुझे पिक्चर निकाल के कल जरूर शेयर करिएगा, ठीक है. मीनवाइल अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए, अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाज में माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
9: हेलो

0: कभी किसी को देखकर ऐसा हुआ है कि दिल में हजार बातें थी लेकिन नजरें उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई? या फिर यूं कहिए, मौत की सबसे गहरी जुबान अक्सर खामोशी ही होती है। और इसी बात पे आज की आफरीन की डायरी से शायरी।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी।
0: वो सामने था और हम पलके उठा ना सके। वो सामने था और हम पलके उठा ना सके। चाहते थे पर पास उसके जा ना सके। ना देख ले वो अपनी तस्वीर हमारी आंखों में, बस यही सोचकर हम उनसे नजरें मिला ना सके।
2: आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती हैं।
0: क्या खूबसूरत ख्याल है ना। हम अक्सर समझते हैं कि नजरें चुराना बेपरवाही होती है, लेकिन कभी कभी नजरें झुक जाना मोहब्बत की इंतहा भी होती है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
2: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
1: श्रेयस यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: क्या लगता है आपको, कौन झूठ ज्यादा बोलता है? Men या women? Welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings. और आज मैं एक ऐसी रिसर्च लेकर आई हूँ जो कहती है कि भाई औरतें ज्यादा झूठ बोलती है या मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं, आपको क्या लगता है? वैसे देखिए, रिसर्च के मुताबिक तो ये है कि मैन टेंड टू लाई स्लाइटली मोर ऑफन देन वुमेन. अच्छा, इनके जो झूठ होते हैं ना, इनके झूठ जो होते हैं उनके खुद के बेनिफिट के लिए होते हैं, फाइनेंशियली, सोशली या कॉम्पिटिटिवली, है ना. लेकिन ऐसा नहीं कि औरतें झूठ नहीं बोलती है, ऑफकोर्स औरतें भी झूठ बोलती है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक औरतों का झूठ जो होता है वो सफेद झूठ होता है. वो किसी के फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी को हर्ट करने से बचाने के लिए, या फिर हंसी खुशी की रहने के लिए, मतलब टू मेंटेन हार्मनी. आपको क्या लगता है कि आदमियों का झूठ काला झूठ होता है और औरतों का झूठ सफेद झूठ होता है, और किसका झूठ जायज है ये तो हम नहीं कहते, लेकिन रिसर्च तो ये कहता है भाई, मैन ऑल आउट देयर, आप लोग ज्यादा झूठ बोलते हो. मैं हूँ आफरीन, आपके साथ लेना चाहूंगी अलविदा. तब तक के लिए आप जो है सोचते रहिए इस बात पर कि भाई कल हमने कितने कहे और परसों कितने कहे, हफ्ते में ऑन एवरेज हम कितने झूठ कह देते हैं, जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं चलता, है ना. ये सफेद झूठ के ब्लैंकेट के अंदर बहुत सारे झूठ कहे जाते हैं, है ना. चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और कल मिलेंगे, फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
1: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन.
2: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है.
1: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
2: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है.
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस.

0: इकबाल की आवाज़ एसपी बालासुब्रमण्यम का साथ और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ यार, क्या खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द फिल्म आना मेरी जान। देखिए बात इतनी है कि कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं ना जिनकी आवाज़ एक पर्टिकुलर एक्टर को 101% कॉम्प्लीमेंट करती है। एंड अगर मैं एसपी बालासुब्रमण्यम की बात करूँ तो जब जब हमने इन्हें सुना है या रैंडमली आप इनका कोई गाना सुनते हैं ना तो इंस्टेंट ख्याल आता है कि भाई ये गाना तो सलमान खान का ही होगा, क्योंकि अगर आप इनकी आवाज़ को देखें इट सो वेरी वेल कॉम्प्लीमेंट सलमान खान के आप किसी और को विजुअलाइज कर ही नहीं सकते। Having said that, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:04।
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे ये जो गाना है और इसमें जो फीलिंग्स बयां की गई है ये काफी सच्ची है।
2: मिर्ची अंशु
0: हेलो वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड सच कहूँ अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करें तो कई बार ऐसा होता है कि ना जाने हम कितने मुद्दों में कितनी बातों में पूरी तरह से उलझ के रह जाते हैं। इसने ये किया, उसने वो कहा, यू नो यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर वैसा हुआ। लेकिन यार लाइफ को अगर आप सही मायने में समझने की कोशिश करेंगे ना तो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बेसिकली उन 4 से 5 लोगों के इर्द गिर्द होती है जो बेसिकली हमारे सबसे करीब होते हैं, सबसे खास होते हैं। लेकिन हम इतने सारे मुद्दों में उलझ जाते हैं कि कई बार जो हमारे सबसे करीब या सबसे खास वो 4-5 लोग होते हैं ना उन्हें वो प्रॉपर अटेंशन देना भूल जाते हैं जो सही मायने में सबसे ज्यादा होना चाहिए। यार जिंदगी में भीड़ थोड़ी ना चाहिए, चंद 4-5 लोग चाहिए। एंड अगर वो सही मायने में पूरी तरह से आपके अपने हैं ना तो सच कहूँ जिंदगी मुकम्मल है। मैं ये नहीं कह रही कि सोशलाइज मत करो, करो यार बहुत दोस्त यार सब कुछ बनाओ, लेकिन जो आपके बेहद करीबी लोग हैं जो आपको पता है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ओहदा पद पोजिशन नाम काम धाम हर हाल में आपके साथ रहेंगे ना यार, भाई साहब उनको अपने दिल के बेहद करीब रखना है। चाहे जो हो जाए उनका टाइम कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो इस बात का हमेशा ख्याल करना। एंड अगर इस बात में है दम, आपको ये बात लगी पूरी तरह से सही, यार एक गुड मॉर्निंग मैसेज तो भेज दो, एक वेलकम मैसेज तो भेज दो, अच्छा लगता है जब आपका मैसेज आता है। 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम mirchi1kataria mirchi anshu। मीनवाइल एक काम करते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ में शो को शुरू करते हुए एक प्यारा सा गाना आप तक पहुँचाते हैं। Enjoy, बंदी का नाम अंशु।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए, आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंट चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बनकर कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड कर.
3: बकवास बनकर
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल के
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: मेट्राश की खूबसूरत सी आवाज सुनवा लवली ट्रैकर्स फ्रॉम द फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा गया। देखिए वैसे मैं जो हूँ ना, जब जब आती हूँ आपकी जिंदगी की उलझनों को कम करने आती हूँ और कुछ तो अच्छा जरूर बताती हूँ।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ। एंड कोई तो खास बात है जो इस वक्त मैं आपको बता दूं। यार देखिए, हमने कतर आकर कुछ समझा हो या ना समझा हो, लेकिन एक बात तो जरूर समझी है कि भीषण गर्मी, वो तपती हुई चिलचिलाती हुई गर्मी जो है ना, कहते हैं तो किसे कहते हैं। अब इतना समझ जाइए, अगर आप भारत से हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो वहां पे ना एक टर्म काफी प्रेवलेंट है जिसे हम कहते हैं नौतप्पा। अब नौतप्पा बेसिकली वो नौ दिन होते हैं जो एक्सट्रीम गर्मी के होते हैं, मतलब जब गर्मी अपनी चरम सीमा में होती है ना, तो उस नौ दिन को कहा जाता है नौतप्पा। अब वैसे ही कतर में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं अलबारी। अलबारी ये आता है अल मुरब्बा अनिया पीरियड में, एंड ये लास्ट करता है 13 डेज तक। एंड ये बेसिकली गर्मी का वो पीरियड माना जाता है जब गर्मी जो है एक्सट्रीम होती है, अपनी चरम सीमा में होती है। एंड फाइनली वो दिन जो है कतर में ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। एब्सोल्युटली ये किक स्टार्ट हुआ 7th of June तक, मतलब आज है इसका थर्ड डे एंड दिस इज गोना कंटिन्यू फॉर अपकमिंग 10 मोर डेज आज को हटाने के बाद। भाई साहब, मतलब भीषण गर्मी के फेज में आपने डुबकी लगा ली है, तो इतना ही कहना चाहूंगी अपने आप को बहुत ज्यादा बचा कर रखें, क्योंकि इनफैक्ट शाम के समय भी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं या किसी ओपन एरिया में है ना, तो बिल्कुल वो जो लू जिसे हम कहते हैं, गर्मा गर्म हवा हम जैसे कहते हैं, वो अब महसूस होने लगी है। तो इस फेज में खुद को बहुत ज्यादा बचा के रखना है, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखना है। पानी आपका बेस्ट फ्रेंड, लेकिन जब जब बात हो आपके कलेजन दिमाग की ठंडक की, तो आपको पता है कहाँ है, अच्छी सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। लेकिन सुनो, अगर एंजॉय कर रहे हो तो मुझे बता दो, एक मैसेज आपका उसके इंतजार में 5001896। हाय हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, जो भी दिल करे। एंड मीनवाइल उस्ताद राशिद खान की आवाज में अगला बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: आदित्य रखारी की ये खूबसूरत सी आवाज़, जिसका ख्याल दिन रैन इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा था ना, उसने मेरी मुराद जो है, मेरी मन्नत जो है वो सुन ही ली।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं आ ही चुकी हूँ एंड बस दिल से जो मैंने गुहार लगाई, जरा देखें वो कैसे उस तक पहुंची कि उसने मेरी मन्नतों को पूरी करते हुए खुद को मेरे पास लाने की कोशिश जो है वो कर ही ली। हाय, इतना शायराना अंदाज, इतने कठिन एंड उलझे हुए अल्फाज मैं किस चीज के लिए कह रही हूँ। वेल, गर्मी का मौसम आया है ना, आपके जहन में, आपके दिल में आम यानी कि मैंगोज का ख्याल ना आए तो फिर क्या ही है, पता है क्या? इनफैक्ट हमारे यहाँ तो एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि भाई साहब, अगर वो ठेले में आम आपको नजर आ गए, मतलब समझ जाओ गर्मी का मौसम जो है वो शुरू हो गया। लेकिन ये बात अलग है, कतर में आने के बाद ये बात हमें महसूस हुई, रियलाइज हुई कि भैया हम जो है ना साल के 12 महीने में नहीं से नहीं 8 महीना तो आम एंजॉय कर ही सकते हैं। लेकिन अगर लोकल आम की बात करें, अपने देश के आम की बात करें, पाकिस्तान इंडिया की बात करें, भाई ये जो फीलिंग है ना ये काफ़ी अलग है। इस वक्त इंडियन मैंगो एग्जिबिशन जो है आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने के लिए है पूरी तरह से तैयार। बिल्कुल, अगर आप मैंगो लवर हैं तो एक बार फिर से आपको अगर कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है सुकवाकिफ एंड दैट टू ईस्टर्न स्क्वायर। पूरी तरह से एयर कंडीशन ये एरिया है एंड 18th ऑफ जून से लेकर 27th ऑफ जून तक आप इसे बिल्कुल एंजॉय कर पाएंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अम्बा एग्जिबिशन। वेल, दिस इज द थर्ड इंडियन मैंगो एग्जिबिशन एंड दिस इज बींग हेल्ड इन कोलाबोरेशन विद द एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इंडियन आम की बहार जो है आपकी जिंदगी में आने वाली है, फटाफट से खरीदी करने की तैयारी जो है आप शुरू कर लीजिए। लेकिन जो जो घर पे आम की कोई अच्छी डिश बनाया यार, मुझ तक थोड़ा तो पहुंचा देना। पहले धमकी दे रही थी, सोचा नहीं यार उससे तो बात बनी कि नहीं, रिक्वेस्ट ही कर देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अच्छा खाना खाना, घर का बनाओ तो और भी पसंद है, यू नो जस्ट सेइंग। और ये सब भी नहीं कर सकते तो एक काम कर दो, मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दो यार। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: की खूबसूरत सी आवाज परंपरा अटेंडेंट का साथ एंड बाकी फोर में कुछ अच्छा हो या ना हो, नो जस्ट सेइंग, लेकिन यार ये गाना जो है बड़ा कमाल है।
1: मिर्ची अंशु
0: हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ। लेकिन मिठास की बात करूँ, स्पाइस की बात करूँ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूँ, तो भाई ये एक बंदी ऐसी जरूर है जो एक काम बहुत अच्छी तरह से करना जानती है। नहीं, मेरे अलावा ये कौन है, ये मैं थोड़ी ना, आप बताएंगे। अब आपके बीच मैं पेश करने वाली हूँ किसी की आवाज, आपको इस शख्स को गौर से सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, बस मुझे ये बताना है कि ये हैं तो हैं कौन। एंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो करेक्ट आंसर भेज दीजिएगा एज यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896, 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची आंशु, बट फॉर नाउ हियर वी गो।
2: द फैक्ट दैट माय पर्सनालिटी एंड द वे आई स्पीक एंड माय कॉन्फिडेंस इज व्हाट वन मी दैट क्राउन मेड मी फील लाइक कॉन्फिडेंस इज योर बेस्ट एक्सेसरी, देयर इज नथिंग एल्स यू नीड, इफ यू द ओनली थिंग यू नीड टू वेयर वेल इज योर कॉन्फिडेंस। The fact that my personality and the way I speak and my confidence is what won me that crown made me feel like confidence is your best accessory. There is nothing else you need. If you, the only thing you need to wear well is your confidence.
0: How true is that? जिंदगी में अक्सर ना हम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, हमारे यहाँ काबिलियत भी है, हमने पूरी कोशिश भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं lack of confidence एक ऐसा factor होता है जो हमें कई हद तक पीछे रख चुका होता है। कई बार लोगों के पास चाहे हुनर की कमी हो, चाहे नॉलेज एंड स्किल की कमी हो, लेकिन कहते हैं ना वो कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा होता है कि भाई सबको मेसमराइज कर ही देता है। तो ये बात तो तय है कि कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बड़ा एक्सेसरी या ज़्यादा बड़ी एक्सेसरी या क्राउन जो है आपकी ज़िंदगी में कोई और हो ही नहीं सकता। अब ये बताओ, इतनी खूबसूरत सी बात इतने आसान लफ्ज़ों में कही तो किसने कही? 5000 1896, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट एन ऑडियो मैसेज। मीनवाइल राशिद अली की आवाज़ एंड अदिति, जस्ट इन केस ये गाना तुम्हारे लिए, एंजॉय।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ, कॉलेज में कैसे जाऊँ?
1: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: दिलजीत दोसांझ की खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम मनमर्जियां, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार। वेल, इस वक्त ये खूबसूरत सा प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जिस आवाज की बात की गई थी उनकी दास्तां आप तक पेश कर दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं आ चुकी हूँ, एंड बस जिस शख्सियत की आवाज आप तक मैंने पहुंचाई थी एक बार फिर से सुना दीजिए for the sake of people who have recently joined.
2: The fact that my personality and the way I speak and my confidence is what won me that crown made me feel like confidence is your best accessory. There is nothing else you need. If you, the only thing you need to wear well is your confidence.
0: Well, आपको बस आइडेंटिफाई कर मुझे ये बताना था ये आवाज है तो है किसकी, जरा देखिए जनता जनार्दन का क्या कहना है।
3: हाय आरजे अंशु, दिस इज मधुलिका कॉलिंग। ये जो प्यारी सी आवाज थी, कॉन्फिडेंस सी आवाज थी, ये थी हमारी प्रियंका चोपड़ा की, माय एब्सोल्यूट फेवरेट। व्हाट अ ग्रेट एक्ट्रेस, थैंक यू।
4: हाय अंशु, आई एम रियाज, दिस इज सावन ऑफ सुष्मिता सेन।
5: हेलो, गुड मॉर्निंग अंशु, दिस इज मुस्तफा अमान फॉर सेक्रेटरी फ्रॉम न्यू सलाद। ये आवाज है माधुरी दीक्षित की। हेलो, थैंक यू सो मच, दिस इज हॉट।
0: Well, वैसे रिप्लाइज तो काफी सारे आए, लेकिन ऑडियो मैसेजेस की बात करूं तो मैंने सोचा कि क्यों ना तीन अलग अलग जवाब जो है आप तक पहुंचाई देते हैं। देखिए, आप तीनों ने जिन तीन महिलाओं का नाम लिया है, नो डाउट अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो उनके पर्याय के तौर पे आज के डेट में भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जरूर मौजूद है। Having said that, जितने आंसर्स आए उनमें मैक्सिमम आंसर्स जिन्होंने लिख कर भी भेजा है, चाहे मैं प्यारे लाल की बात करूँ, यूसुफ की बात करूँ, यूनुस की बात करूँ, अफरीद की बात करूं, प्रियंका की ही बात करूं, आप सबने जो कहा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आवाज है प्रियंका चोपड़ा की। वेल, कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट एक्सेसरी अ वुमन कैन वेयर, एंड इस बात को ट्रूली अगर कोई जस्टिफाई करता है ना भाई, तो मुझे लगता है वो है प्रियंका चोपड़ा जोनस। यार, प्रियंका की जर्नी जो है सिर्फ ग्लैमर एंड सक्सेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है सेल्फ बिलीफ की, रेजिलियंस की, एंड भाई खुद पर भरोसा रखने की। फ्रॉम विनिंग द मिस वर्ल्ड क्राउन टू मेकिंग हर मार्क इन बॉलीवुड एंड देन स्टेपिंग इनटू हॉलीवुड एंड ग्लोबल एंटरटेनमेंट, अगर आप उनकी जर्नी के हर एक फेज को देखने की कोशिश करेंगे ना, तो अपने आप में कई चैलेंजेस आए, कई क्रिटिसिज्म आए, कई डाउट्स भी आए, लेकिन एक चीज जो है ना इस बंदी की जिंदगी में कभी नहीं बदली, और वो है उनका कॉन्फिडेंस। Not the confidence that says that I'm better than everyone, but the confidence that says I'm willing to learn, grow and keep moving forward. And शायद इसीलिए इनकी जर्नी हमें याद दिलाती है कि भाई कॉन्फिडेंस जो है ना ये ओवरनाइट नहीं आता। It is built every single day by learning, by improving, by showing up even when things don't go your way. तो बस जब जिंदगी में कुछ मुश्किल लगे या लगे कि कोई अपॉर्चुनिटी मेरे रास्ते क्यों नहीं आ रही, मेरे दरवाजे पे दस्तक क्यों नहीं दे रही, तो बस ये याद रखना कि क्या हर दिन खुद को शार्पन किया, हर दिन एक कदम आगे चलने की कोशिश की, और अगर ऐसा हुआ है तो इतना समझ जाओ कि जिस दिन तुम कॉन्फिडेंट बनोगे ना, दुनिया की हर एक मंजिल तुम्हारे दरवाजे खुदा खड़ी होगी। आईपी सिंह की आवाज, जोनिता गांधी का साथ, एंड इस वक्त ये पावर पैक गाना सुनाते हैं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La fiesta la murga.
1: Mirchi, murga. हेलो
2: हेलो नवनीत
1: या
2: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
1: हाय नवेद,
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
2: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
1: हाँ, बन गया क्या
2: यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
1: हाँ?
2: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
1: या मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
2: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
1: मिस्टर दिलीप।
2: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
1: मैं क्या कुछ गलत
2: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार?
1: अब ऐसी बात क्या
2: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: अब मैं क्या
2: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
2: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ यानी कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
2: अरे तो
1: उनकी तरफ से मैं माफी
2: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफिया मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
2: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
1: कुकड़ुकू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मोहित चौहान की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इज फ्रॉम द फिल्म लव आजकल. मतलब कुछ गाने जो है ना पूरी तरह से आपके दिल में जगह बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. तो ये मैजिक जो है ना ही सिर्फ मोहित चौहान की आवाज़ में है बल्कि इस फिल्म की खूबसूरती में भी ज़रूर है. लेकिन यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि सैफ अली खान एंड दीपिका पादुकोण जो है एक साथ इतने प्यारे लग सकते हैं. इस गाने ने उस बात को सही प्रूफ कर दिया. अच्छा सुनो, कुछ याद दिला दूं, पानी पिए या नहीं.
1: मिर्ची अंशु.
0: Hey, welcome back. You are listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ ही चुकी हूँ. एक बात बताओ यार, जब भी गर्मी बहुत ज्यादा लगती है इमीडिएटली सबसे पहले किसकी याद आती है? एसी, पंखा, बाद में सबसे पहले आता है पानी. उस वक्त लगता है भाई कोई ठंडा ठंडा पानी पिला दे, कोई चिल सा सॉफ्ट ड्रिंक दे दे, कोई अच्छा अच्छा ठंडा वाला जूस दे दे. देखिए बात इतनी है, जो बहुत ज्यादा ठंडे ड्रिंक्स होते हैं ना ये नेसेसरली आपकी बॉडी को कूल डाउन नहीं करते. इनफैक्ट जब आप बहुत ज्यादा ओवरहीटेड होते हैं उस समय आपकी बॉडी के एब्जॉर्प्शन में ज़रूरी अगर कुछ है तो वो है नॉर्मल या स्लाइटली कूल फ्लूइड्स. नाउ दे बिकम मोर इफिशियंट. इसीलिए जितने भी एथलीट्स हैं या ट्रेनर्स हैं वो एकदम ज़्यादा ठंडे हाइड्रेशन के बदले स्लाइटली कूल हाइड्रेशन जो है गेम्स के समय प्रेफर करते हैं. और एक और इंटरेस्टिंग सी बात जो है ना इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी, पता है जब एक्चुअली आपको प्यास लगनी शुरू होती है ना उसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेशन की तरफ मूव होनी शुरू हो चुकी है. यानी कि प्यास लगना जो है वो पानी पीने का पहला सिग्नल नहीं है, ये इनफैक्ट लेट सिग्नल है. इसीलिए एक्सपर्ट्स यानी कि अंशु का नहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि खासकर जब हम कतर जैसी जगह में रहते हैं ना तो भाई पानी को एक रूटीन बना लो, एक हैबिट बना लो. सब जब प्यास लगे तब नहीं पीना है, हर एक इंटरवल में, एक डेढ़ घंटे के इंटरवल में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो पीते रहना है ताकि डिहाइड्रेशन हो उसके पहले हम अपनी बॉडी को ना हाइड्रेटेड रखने की पूरी तैयारी कर ही लें. बाकी आपके कलेजन दिमाग को हाइड्रेटेड रखने के पूरा पूरा काम तो मैं कर ही लेती हूँ. सुनते रहिए, टिक्के बने रहिए कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु. We'll be right back.

0: दिलीप कुमार की पावर पैक आवाज एंड क्या गजब का गाना, लेकिन इस गाने ने मुझे अगर किसी की याद दिलाई तो वो है मस्त कलंदर की।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. भाई साहब, गर्मी का मौसम हो मौका है, गर्मा गर्म ना ठंडा ठंडा, हमारी जिंदगी में कलंदर ना आए तो फिर क्या ही है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट तरबूज यानी कि वाटरमेलन। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि गर्मी में अगर फलों की बात करें तो दो चीज़ें जो 101% हमारे घर में अक्सर लाई जाती थी, सो वन यूज टू बी मैंगोज एंड सेकेंड यूज टू बी वाटरमेलन। एंड भाई, वाटरमेलन के बिना तो जेन्युइनली गर्मी जो है ना वो अधूरी हुआ करती थी, क्योंकि हाइड्रेशन की बात करें, खुद को पूरी तरह से फ्रेश फील कराने की बात करें, तो ये एक फल ऐसा है जो अपने अंदर ये पूरी कैपेसिटी रखता है। चलिए आज ना मैं आपको वाटरमेलन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। वाटरमेलन हाइड्रेशन के लिए तो काम करता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। पता है कैसे? सिर्फ एक पिंच ऑफ सॉल्ट, जरा सा नमक अगर आप उसमें मिला देते हैं ना, तो वाटरमेलन जो है हाइड्रेंट के साथ साथ एक इलेक्ट्रोलाइट भी बन जाता है। एंड बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान खासकर समर सीजन में इसे एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के तौर पर भी यूज करते हैं। नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट, बढ़िया है जी। वैसे एक रेसिपी जो है मैं अक्सर घर पर बनाती हूँ जो मुझे काफी अच्छी लगती है वाटरमेलन की। सो वाटरमेलन में मैं कुछ मिंट लीव्स डालती हूँ एंड इसके साथ जरा सा नमक डाल के बस अच्छी तरह से इसे पीस लिया एंड इस ड्रिंक को आप पीकर देखो भाई, इट इज सो वेरी रिफ्रेशिंग। मतलब इसके जो फ्लेवर्स उसके बाद निकल कर बाहर आते हैं ना, थैंक यू अंशु बोलोगे नहीं, अगली बार सिर्फ बनाना नहीं है, बनाओगे तो मुझे बताना है और फिर मेरे घर भिजवाना भी। 5001896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम। मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल अरिजीत सिंह एंड सुकृति कक्कड़ की आवाज में अगला गाना एंजॉय करते हैं, वाटरमेलन। अच्छा कहाँ मिलेगा? अरे सारे के सारे सुपरमार्केट्स हाइपरमार्केट्स में जाओ, नहीं तो होलसेल मार्केट में जाओ, अल सही लिया मस्त मिलेगा। किसी ने पूछा तो सोचा ये भी बताई दे। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विद्या बालन आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
3: ऑफ कोर्स कस्तो मजा परिणीता से, और शिलीगुरु में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
2: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: वेल अरिजीत सिंह की एक खूबसूरत सी आवाज़, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। इस वक्त ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन ये अच्छी सी बात भी आप तक पहुंचा दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। देखो यार, कतर को इस वक्त देखने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें जो है हमारे लिए ऑलरेडी लाइंड अप है। एंड इस बार जैसा विजिट कतर ने अनाउंस किया है, हाला समर, ये कैंपेन हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस बार समर्स जो है वेकेशन के नाम पे भी जाना जाएगा। मतलब समर वेकेशन अगर आपको कहीं मनाना है, बिताना है, अगर आप कतर में हैं, कहीं नहीं जा रहे तो टेंशन ना लें, नानी का घर जो है ना कतर आपको याद दिलाने में कहीं कोई कमी ना छोड़ेगा। अब हाला समर के चलते एक कैंपेन जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू नो इज किड्स गो कैंपेन। एब्सोल्युटली बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो बच्चों के लिए सेंट्रिक होंगी, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारे डील्स एंड ऑफर्स दिए जाएंगे जिसमें बच्चों के लिए एंट्री जो है ना पूरी तरह से मुफ्त, ये ना समझो कि बच्चे जो हैं उनके साथ माँ बाप मुफ्त में आएंगे। तुम्हें अपना पैसा तो देना पड़ेगा बेटा, हर जगह मुफ्त की चीज़ तो ना मिलती। अब देखना है कि आगे आगे क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कदर टॉय फेस्टिवल के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, वाटर पार्क्स के जो प्रमोशंस चल रहे हैं वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाले हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे आएंगी आप तक पहुंचती जाएंगी। उसके लिए आपको एक ही जगह पहुंचना है, बस कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑल स्टे ट्यून्ड, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: वो सोनू निगम की आवाज यानी खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन बस यही उम्मीद और यही दुआ है कि ये समा जो है ये जितनी जल्दी जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: Weather update.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त इस समा को देखने की कोशिश करूँ, उस माहौल को अपनाने की कोशिश करूँ तो एक बात तो तय है कि पनीर की भुर्जी मैंने घर में ना बनाई तो क्या हुआ। जरा मैं 5 मिनट खड़ी क्या हुई, मेरी खुद की भुर्जी कैसे बनती, ये बात जो है मुझे 101% पता चली गई यार। लेकिन सही कह रही हूँ, मतलब अगर किसी भी चीज़ को धूप दिखाना है तो मैं लगता है कि घर का कोई खाने का सामान है जो खराब हो रहा है ना, परफेक्ट मौसम है 10 मिनट में, वो भी क्या कड़ाकेदार तरह से सूखेगा। तुम भी अगर खड़े होने की कोशिश की तो हाल जो है आलम जो है यही कुछ होगा। बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गर्मी जो है अपनी परम चरम सीमा में पहुंच चुकी है। अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को हम देखने की कोशिश करें सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 47, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 34-35। कीप योरसेल्फ फुल्ली हाइड्रेटेड, सनस्क्रीन तुम्हारा बेस्टेस्ट बड़ी। एंड इसके साथ ही कलेजन दिमाग के ठंडक के लिए अंशु है ना स्टेडियो टू मची बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: Hello, Sunil ji.
1: Haan ji.
2: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं.
1: किस चीज के जी सर?
2: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
1: वेरी गुड यार.
2: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
1: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
2: हाँ जी.
1: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
2: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
1: कंडीशन वगैरह?
2: नहीं सर, कोई सर कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
1: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना.
2: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
1: क्या?
2: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
1: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
2: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला है.
1: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
2: सर पुराना जो आपने
1: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो तो
2: सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
1: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
2: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
1: पेट्रोल मिल गया तो वो बड़ी अच्छी बात है.
2: अरे अरे तो ये क्या
1: पुराना कहाँ से लाऊं?
2: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
1: पेट्रोल फालतू का. अच्छा. पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ.
3: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
4: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
5: उससे भी ज्यादा.
4: लॉटरी लग गई?
5: उससे भी बड़ा.
4: तो फिर बताओ.
5: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है. ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम.
0: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच. पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ.

0: यार मैंने तो कतर के फ्यूचर से मुलाकात बस आज कर ही ली।
1: मिर्ची अंशु
0: हेलो वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल इस वक्त आपको ये बता दूं कि अगर आप दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर के पास से गुजरें तो आपको सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं बल्कि कतर के फ्यूचर की एक झलक देखने को मिल ही जाएगी। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट कतर 2026 जो इस साल अपना 22nd एडिशन सेलिब्रेट कर रहा है। एंड सबसे खास बात, ये कतर के सबसे एस्टैब्लिश्ड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एग्जीबिशन में से एक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में आखिर हमको क्या ही देखने को मिलेगा, वो सब कुछ देखने को मिलेगा दैट बेसिकली हेल्प्स बिल्ड अ सिटी फ्रॉम स्मार्ट बिल्डिंग्स एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस टू एआई पावर्ड टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग इनोवेशंस, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के साथ साथ फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर आइडिया। देखिए बात इतनी है, जब भी हम किसी नए मॉल, स्टेडियम या मेट्रो स्टेशन में जाते हैं ना तो हम एक आइकॉनिक बिल्डिंग को देखते हैं और लगता है भाई क्या कमाल का कंस्ट्रक्शन है। लेकिन प्रोजेक्ट कतर आपको वो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दिखाता है जो उन प्रोजेक्ट्स के पीछे काम करती है। सो बेसिकली दिस इज वेयर द फ्यूचर गेट्स बिल्ट बिफोर इट बिकम्स रियलिटी। तो बस अगर फ्यूचर से मुलाकात करनी है एंड साथ में मुझसे भी मुलाकात करनी है तो प्रोजेक्ट कतर 2026 अटेंड करने दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पे पहुंच ही जाइए। मिलूंगी मैं आपको। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर।

0: क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे जब एक्सचेंज करे इतना कमाल हो तो इंसान पैसे को याद ना करे तो फिर किसे ही करे। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। भाई साहब, इस वक्त जिंदगी में खुशहाली की दो वजह, एक तो मैं जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, दूसरी अच्छा एक्सचेंज रेट। जरा देखे आई पे मनी में आज का पैसा क्या ही बोलता है। वेल, अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.20, पाकिस्तानी रुपीज 76.76, नेपाली रुपीज 41.85, बांग्लादेशी टाका 33.70 एंड इसके साथ ही लंकन रुपीज 92.38। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है, और वो कौन है? शाहिद कपूर. बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
3: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क विश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन.
2: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal. Only on Mirchi, it's hot.

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: या जो हर वक्त दिखे जरूरी नहीं वही सच हो।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आजांशु विद यू। वेल, इतना कहना चाहूंगी कि अक्सर हम ना लोगों को देखकर काफी सारी धारणाएं मतलब बहुत सारी जजमेंट्स जो है ना करने लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त जो दिखता है सब कुछ बस वैसा ही हो। यार, हम सब ना अपनी अपनी जिंदगी कहानी कहीं ना कहीं जरूर लड़ रहे हैं। किसी को ऑफिस का टेंशन है, किसी को फैमिली का, किसी को हेल्थ का, तो किसी को फ्यूचर का। किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है हम क्या ही समझ सकते हैं। तो अगर कोई इंसान किसी एक तरह से बिहेव करता है उसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली आप जो है उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने लग जाए। शायद इसे तो काइंडनेस कहते हैं, ह्यूमिलिटी कहते हैं, कि लोगों को जरा समझने की कोशिश करना, एम्पथी नामक चीज को अपनी जिंदगी में शामिल करना। यार, इतना ही कहना चाहूंगी, किसी को जज करने के बदले जब किसी से मिलो ना तो जरा एक मुस्कान देने की कोशिश करना। बिना मांगे ही क्यों ना एक पल के लिए वो मदद का हाथ बढ़ाने की कोशिश करना। हो सकता है कि कोई तुमसे नाराज हो, बिना दिल के भी कभी किसी को मनाने की ही कोशिश कर लेना, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं ना, क्या पता किसी की जिंदगी में बड़ा मैजिक क्रिएट कर ही जाए। क्या कहती पब्लिक, अगर बात अच्छी लगी फटाफट से एक थम्स अप भेजो 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची आंशु। अभी के लिए अलविदा, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। स्टेडियम टू मिर्ची, पंडी का नाम आंशु। एंजॉय।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं?
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: सो वियर्ड यार कि मुझे मेरी जो करंट नॉवल मैं अभी पढ़ रही हूँ उसका नाम याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे अचानक एकदम से याद आया कि मेरी पहली नॉवल का नाम क्या था।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And well, आज actually ऐसे ही बैठे बैठे ना अचानक मैं जब कोशिश कर रही थी कि मेरी जो करंट नॉवल मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम क्या है, किसी ने पूछा था व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज, तो मैं उसे याद करने की कोशिश कर रही थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे मेरी जिंदगी की पहली नॉवल का नाम याद आ रहा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक नॉवल मैंने खरीदी थी, इनफैक्ट मैंने नहीं, मेरी मम्मा ने खरीदी थी ताकि मुझे रीडिंग की आदत पड़े। एक छोटी सी नॉवल थी, मोटी सी नॉवल थी और मुझे बड़ी अच्छी लगा करती थी। उस नॉवल का नाम था The Black Beauty. It was the story about a horse and कैसे उस अस्तबल में घोड़े जो हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कैसे उनकी जिंदगियां होती हैं, कैसे वो इंसानों से डील करते हैं, इंसान उनसे डील करते हैं। It was a story about that and it was just beautiful. But it is so weird कि मुझे वो चीज याद है, लेकिन आज जो चल रहा है ना मेरी लाइफ में वो मुझे याद ही नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पुरानी बातें तो एकदम पुख्ता मैप की तरह आपके दिमाग में छपी हुई हैं, लेकिन आज क्या चल रहा है, आज क्या हो रहा है या अभी क्या हुआ था हमें याद ही नहीं रहता यार? अगर हाँ तो DM कर दो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और इसी के साथ आप मुझे ये भी बता दो कि आपकी जिंदगी की पहली नॉवल कौन सी थी। DM करो, और फिलहाल के लिए तो मैं मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Ne vin pa la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी।
3: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
2: या
3: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
2: बोलिए।
3: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
2: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
3: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
2: Oh my God.
3: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
2: नहीं मैम, प्रॉब्लम
3: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
2: चना दाल, चना कबूली। एरोप्लेन भेजू?
3: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
2: सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
3: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
2: Hello.
3: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछी पुछी कुछी पुछी. ओके स्वीटहार्ट बाय. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
2: गोलगप्पे नहीं होते हमारे यहाँ.
3: चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
2: है नहीं मैम हमारे यहाँ.
3: लंबे वाले
2: नहीं है वो.
3: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं.
2: क्या खाते हैं
3: मैम? मुर्गा.
2: मैम वो भी नहीं है.
3: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
2: मैम ये हमें नहीं
3: पता. हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
2: हाँ जी मैम बताइए.
4: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
2: आपकी आवाज में काफी कुकुड़कू.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बंधन एक ऐसी फिल्म थी जिसने न सिर्फ हमें सलमान खान की एक मूवी दिखाई, एक स्टोरी दिखाई, एंटरटेन किया, बल्कि एक जिंदगी भर का डायलॉग भी दिया जो हमारे साथ चिपक कर रह गया. एंड दैट इज जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा.
0: मिर्ची VCR.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड रंभा, सलमान खान, जैकी श्रॉफ स्टारर बंधन. दिस फिल्म मैंने पता है केबल पे देखी थी, क्योंकि ये तो वो फिल्म थी नहीं जो हमारे घर वाले हमें थिएटर में देखने के लिए लेकर जाते, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हर एक फिल्म उस टाइम पे थिएटर में नहीं देखा करते थे यार. या तो डायनासोर्स की फिल्म या गॉडजिला की फिल्म, बच्चों से रेलिवेंट कोई भी फिल्म हुआ करती थी हमें थिएटर में लेकर जाया करते थे. या अगर गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बड़ों को मूवी देखनी है तो वो हमें ले जाया करते थे. लेकिन बंधन गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आई थी, ये भी एक बात थी हमारे लिए. और मैं ना बड़ी तड़प रही थी क्योंकि मुझे पता था कि सलमान खान की एक नई फिल्म तो आई है बॉस. बस केबल वाले का इंतजार था कि अब ये कब ये फिल्म लगा देगा. और एक दिन ऐसा ही हुआ कि अचानक केबल चैनल पर मुझे सलमान खान की झलक देखने को मिली और मुझे समझ में आ गया सलमान खान की नई फिल्म केबल टीवी पर आ चुकी है बॉस. वेल, ये वो फिल्म थी जिसने सलमान खान को लवी डवी मूवीज के जोन से निकाल कर एक्शन में डाल दिया था. और यहाँ से सलमान खान ने एक नई तरीके की फिल्मों का दौर शुरू कर लिया अपने करियर में. एंड दैट इज एक्शन मूवीज. मगर इस फिल्म की शूट के दौरान एक बड़ा ही मजेदार किस्सा हुआ. इस फिल्म के अंदर आसिफ शेख, जो कि आपको भाभी जी घर पर है शो में भी नजर आए हैं, वेल उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है. सलमान खान के साथ काम करते करते दोनों की दोस्ती जो है वो काफी पुख्ता हो गई थी. एंड देयर वाज दिस वन डे जब सलमान खान और आसिफ शेख जो हैं वो एक साथ सलमान खान की गाड़ी में राइड लेने के लिए चले गए. हुआ ये कि सलमान खान अचानक फुटपाथ पर गाड़ी चलाने लगे. एंड आसिफ शेख जो हैं उन्होंने सलमान खान को कहा कि भाई जरा ध्यान से, पुलिस वाले पकड़ लेंगे. तो सलमान खान का रिप्लाई इस पर पता है क्या है? अरे फिकर मत करो यार, तुम सलमान खान के साथ ड्राइव कर रहे हो. अब जैसा आसिफ शेख ने सोचा था वैसा ही हुआ कि पुलिस वालों ने उन्हें इवेंचुअली पकड़ लिया, क्योंकि गाड़ी तो फुटपाथ पे चल रही थी ना यार. लेकिन जैसा सलमान खान ने बोला था वैसा नहीं हुआ कुछ भी प्रिडिक्शन के अनुसार, क्योंकि पुलिस वाले जो थे वो सलमान खान को पहचान ही नहीं पाए कि हु सलमान खान. जिस पर गाड़ी में बैठे सलमान खान एंड आसिफ शेख दोनों जोर जोर से हंसने लग गए कि यार जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे तो कॉमेडी और हो गई. मगर इस किस्से के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई यार, कि भाई की शायद हॉबी है फुटपाथ पर गाड़ी चलाना. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: यार तूने सुना एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
1: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बंधन मूवी में जीजा जी का रोल बड़ा वजनदार था यार, जो कि जैकी श्रॉफ ने निभाया था। लेकिन दीदी के बिना कभी जीजा जी कुछ हो सकते हैं?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड बंधन मूवी में सलमान खान की सिस्टर, उनकी बड़ी बहन का रोल किसने निभाया था? वेल, शी वाज एन एक्टर जिनका नाम है अश्विनी भावे। एंड यू नो व्हाट, अश्विनी की उम्र सलमान खान से 6 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी शी गॉट कन्विंस्ड टू प्ले हिज एल्डर सिस्टर का रोल। इस फिल्म को 1994 में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसकी रिलीज को 4 साल लग गए। और 1998 में जब ये फिल्म 4 साल बाद रिलीज हुई ना, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हिट हो जाएगी, क्योंकि यूजुअली जब इतने डिले के बाद कोई फिल्म रिलीज होती है तो वो हिट नहीं हो पाती है, बिकॉज एक बहुत बड़ा टाइम लैग आ जाता है ना यार, कि 4 साल पहले सोचा हुआ आइडिया अब 4 साल बाद भी एप्लीकेबल है कि नहीं है। लेकिन सिंस पैसा लग चुका है, सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं और फिल्म जो है वो लॉन्च होने के बाद रिलीज होने को भी तैयार हो गई है, तो रिलीज कर देते हैं वाला मामला यहाँ पर भी था। कर दी फिल्म रिलीज एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड हिट। बट डिड यू नो कि सलमान खान ने जैकी श्रॉफ के साथ काम करने से 10 सालों तक मना किया था, क्योंकि उनको कहीं से उड़ती हुई ये खबर मिली थी किसी जमाने में कि यार 80s के दौर में जैकी श्रॉफ और सलमान खान की एक्स फियांसे संगीता बिजलानी, इनके बीच में कुछ तो स्पार्क था, जिसकी जानकारी उन्हें किसी अंदरूनी खबरी से मिली थी। बट फाइनली जब बंधन की बात आई तो सलमान खान ने अपने ग्रजेस को जाने दिया और इस फिल्म को रिलीज होने के लिए आने दिया। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
3: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
2: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: darling. Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever.
1: What's up? Tell me.
2: सर कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, क्या करूं?
1: Oh my God, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी अजीब बात है यार, बचपन में जिस कार्टून कैरेक्टर को देख देख कर बड़े हुए उसको उस जमाने में तो सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर ही समझा करते थे, और हाँ पसंद भी बहुत आया करता था, इम्प्रेसिव बहुत था। लेकिन आज उसी कार्टून कैरेक्टर को जब मैं सोचती हूँ ना, तो लगता है कि हाय काश कि मैं यही कार्टून होती लाइफ में।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, Sarah, aapki 90s ki yaadon ka pitara, and the cartoon character that I'm talking about is Richie Rich. Yaad hai aapko? Yaar, bachpan mein jab is character ko dekha karte the na, to impressed main hoti thi ye dekh kar ki haaye kya life hai yaar, kya ghar hai, kya gaadiyan hain, futuristic gaadiyan hoti thi bande ke paas, kya kya gadgets hua karte the, kya bangla tha uska. लेकिन हमें तब भी ना सबसे अच्छी बात रिची रिच की लगती थी कि ये हमेशा सही का साथ देता है। एक अमीर लड़का होकर भी ना उसमें एक मासूम बच्चा छुपा है जो दोस्ती और इंसानियत में यकीन रखता है। आज मुझे उस रिची रिच के अंदर पता है क्या नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ ये बात कि यार क्या मस्त लाइफ है यार इसकी, क्या करना है इसको, अच्छा ही तो होना है ना सबके साथ। दैट्स सो सिंपल, मेरे पास इतना पैसा आ जाए ना तो मैं भी इतनी अच्छी हो जाऊं सबके साथ। Which is not really easy जब आपके पास इतना पैसा आ जाता है तो, because लालच भी तो बुरी बला होती है और तभी ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा होता है। But nevertheless मेरे को तो यही लग रहा होता है कि यार काश काश की लाइफ में और कुछ ना करना होता और सिर्फ रिची रिच का रोल प्ले करना होता तो मैं तो तैयार थी फौरन से ये काम करने के लिए। आप बताओ, आपको रिची रिच इसी वजह से आज ज्यादा पसंद आता है या बचपन में ज्यादा पसंद आया करता था? DM करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चुप कर. 2 साल काम किया एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स आए जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बनकर, बकवास बनकर, कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड
3: कर. बकवास बनकर, बकवास बनकर,
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: शराब
1: बोलते हैं लोग.
3: शराब
1: उन्हें.
3: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका. कोई पेशेंस चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंस चेक कर रहे हैं, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: लता जी और उदित जी की आवाज में दिस गाना इज सच अ गाना जिससे कि हम कभी नहीं उभर पाए यार. मतलब ये जो म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह जी ने, इट वॉज समथिंग विच नो वन कुड एवर रिक्रिएट. रिक्रिएट तो चलो दूर की बात है, मगर इसके आसपास के बराबर का भी कुछ म्यूजिक मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा निकल के आया. आई तो आई एम जस्ट इन लव विद दिल तो पागल है का म्यूजिक और उसके गाने एंड ऑफ कोर्स द फिल्म एज वेल. इट्स अ पैकेज डील एंड आई कैन जस्ट नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, सो आई बेटर मूव ऑन.
1: सारा ज़माना सारा का दीवाना.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And before मैं again दिल तो पागल है के बारे में ब्लाबर करने लग जाऊं, अच्छा यही होगा कि मैं अगली बात छेड़ देती हूं, which is मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गानों की धुनें मैं आपस में मिलाकर आपके लिए चला देती हूं और आपको गेस करना होता है कि ये जो दो धुनें आपने सुनी वो कौन से दो गानों की है. तो ये अभी गो आज की धुनों के साथ.

यस जी, मुझे डीएम कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो, एंड स्टे ट्यून्ड हो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: तब वो अजय देवगन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हकीकत। उसका एक ऐसा गाना था जिसे कि हमें बचपन में सारे बड़े टोका करते थे गाने के लिए कि नहीं नहीं ये गाना नहीं गाना है, ये अच्छी बात नहीं होती है जो इस गाने में कही गई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस गाने में क्या कहा गया था यार, बस यही तो कहा गया था। लेकिन मुद्दा ये नहीं है आज के टाइम पर, ये तो हमारे बड़ों का मुद्दा हुआ करता था। मुद्दा तो ये है कि ये जो कहा गया है, ये गाया गया है, जो म्यूजिक है ना, ये ओरिजिनल नहीं है बॉस, क्योंकि ये तो कॉपी की गई है फ्रॉम एन इंग्लिश बैंड जिसका नाम था द चैम्प्स, और उनका 1958 में रिलीज हुआ ये गाना टकीला इज एक्चुअली द ओरिजिनल म्यूजिक, जहां से इस गाने की इंस्पिरेशन या कॉपी, व्हाटएवर वी वांट टू से एंड व्हाटएवर वी फील अबाउट इट, की गई है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है ना कि 90s की कोई फिल्म है या कोई गाना है जो कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया गया, तो फॉरन डीएम करिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: यार हम सब ने ये तो एक जमाने में पूछा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन हमने ये कभी नहीं जानने की कोशिश करी कि यार गजनी मूवी के अंदर कल्पना संजय सिंघानिया की आइडेंटिटी जाने बगैर ही मर गई। भाई ये हमारे लिए एज एन ऑडियंस तो बहुत ही दर्दनाक बात थी, और इस बात के पीछे जो वजह थी वो आज जाके पता लगी है।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इस फिल्म के डायरेक्टर A.R. मुर्गा दोस्त ने बताया कि यार इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते टाइम एक्चुअली जब उन्होंने ये अपने आप से सवाल किया कि व्हाट इफ अगर कल्पना को संजय सिंघानिया की असलियत पता लग जाती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इवेंचुअली ही अराइव टू द कंक्लूजन कि यार अगर उन्होंने इस स्क्रिप्ट के अंदर ये एडिशन कर दिया ना कि हाँ कल्पना को संजय सिंघानिया यानी कि आमिर खान के बारे में असीन को सब कुछ पता लग जाता है तो यार मजा चला जाएगा इस फिल्म के अंदर से। मजा तो वही था जहां कल्पना को ये बात नहीं पता थी कि संजय सिंघानिया आखिर हकीकत में है कौन, और कल्पना का वो जो जेस्चर था ना कि वो इतनी मासूमियत से संजय सिंघानिया जो इतना मिलियनर और मल्टी मिलियनर इंसान है उसको उसके पैसे भी लौटा रही है, इतनी सच्चाई से उसके साथ बिहेव कर रही है और बहुत ही बेसिक बातों को लेकर खुश हो रही है, वही वो सारी चीजें थी जो संजय सिंघानिया यानी कि आमिर खान का कैरेक्टर जो था उसको पसंद आई थी अबाउट कल्पना यानी कि असीम, और यही वो सारी बातें थी जो इस कैरेक्टर को लेटर ऑन याद रही आफ्टर ही फॉरगॉट एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज नेम हिज फेम हिज मनी हिज हाउस ही फॉरगॉट एवरीथिंग बट जस्ट दैट गर्ल, और ये वही फील था वही इमोशन था जिसको वो टैप करना चाह रहे थे। लेकिन अगर कल्पना को संजय सिंघानिया के बारे में पता लग जाता तो ये इमोशन इतना अग्रेसिवली निकल के नहीं आता, क्योंकि वही चीज बार बार आमिर खान के कैरेक्टर को हिट कर रही थी एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि उन्होंने इस चीज को वहीं छोड़ दिया। इनफैक्ट द रीजन कि आज आप और मैं इस बात को डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको ये चीज बता रही हूँ स्पीक्स अ लॉट अबाउट द फैक्ट कि उन्होंने सही किया कि संजय सिंघानिया की आइडेंटिटी कल्पना से हमेशा के लिए छुपाई ही रखी, वरना हम भी कहाँ इस बात के बारे में बात कर रहे होते। You tune in with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Kabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो नवनीत
2: या
3: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
3: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
3: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
3: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
3: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: या मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
3: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
3: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
3: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार।
2: अब ऐसी बात क्या हो गई?
3: ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
3: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ यानी कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो तरफ से मैं
3: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
3: तुम मुझे क्या पता था यार, तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
2: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
3: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लूं। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
2: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
3: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं।
2: नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
3: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो,
2: कुकड़ुकू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Anguthi Wali Jelly.
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सोचते हैं कि खुद को डायमंड वाली अंगूठी दिलाएं, लेकिन इस दौर में भी तुम याद आई जाती हो यार। तुम्हें याद करके ना बचपन की मीठी यादें ताजा हो जाती हैं। वो छोटी रंग बिरंगी नरम नरम और मीठी जली जिसे उंगलियों में पहनकर राजा महाराजा जैसा महसूस करते थे यार। मैं अक्सर ना तुम्हें ट्यूशन पहनकर चली जाती थी, होमवर्क करते करते छुप छुप के तुम्हारे चटकारे लिए जाते थे, और तुम्हारी बेस्ट बात भी यही थी कि तुम्हें खाते खाते हाथ गंदे और चिप चिप नहीं होते थे। टॉफी और चॉकलेट के बीच तुमने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। जेब में चिल्लर हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खरीदने की जिद कभी कम नहीं हुई। दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हें उंगलियों में पहनना और फिर धीरे धीरे तुम्हें चाट चाट कर खाना, क्या मजा आता था यार। आज के फैंसी चॉकलेट्स और स्नैक्स के बीच में तुम कहीं खो तो गई हो, लेकिन तुम्हारी यादें अब भी हमारे साथ हैं। काश फिर से वो बचपन लौट आए और हम तुम्हें वैसे ही उंगलियों में पहनकर खिलखिलाते हुए तुम्हारे चटकारे ले सके। तो सच बता रही हूँ, आज ये जो हम सोने चांदी की अंगूठियाँ पहनते हैं ना, उन्हें भी एक पल साइड में रखने के लिए तैयार हो जाऊंगी मैं। थैंक यू हमारे बचपन को इतना मीठा और इतना रंगीला बनाने के लिए। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुमार सानू एंड कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म डुप्लीकेट से ये गाना इस कैसेट के साइड ए का दूसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: गाना कौन सा है? वेल, आपको गेस नहीं करने देती हूँ, खुद ही बता देती हूँ। लल्लाई लल्लाई लल्लाई लल्लाई लल्लाई लल्लाई। जब ये लाइन्स आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे, इसकी म्यूजिक ही इतनी कंप्लीट है कि आगे हमें लिरिक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जब लिरिक्स सुनते हैं तो और ज्यादा मजा आता है। कॉम्पोजिशन बाय अनु मलिक एंड लिरिक्स गेस किसके? जावेद अख्तर साहब के। तभी तो इतने इंटरेस्टिंग लिरिक्स हैं। जब ये लिरिक्स आते हैं ना, और जहां पर ये बात कही जाती है कि एक शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे खोने को है, हमको मोहब्बत होने को है, तो ये जो सारे के सारे आसार हैं, ये एक्चुअली मोहब्बत के ही होते हैं। जब शरारत होने वाली होती है और कयामत भी होने वाली होती है और होश भी खोने वाले होते हैं, ये सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं, तभी तो इंसान किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन ना, मुझे ये बात बड़ी प्यारी लगी जब एक इंसान दूसरे इंसान को, यानी कि कोई इंसान अपने पार्टनर को ये कह रहा होता है कि चलते हैं गाते गाते, सोचा ना जाते जाते कि जाएंगे दोनों हम कहाँ, आंखों में हल्के हल्के सपने हैं झलके कल के, सब इश्क के हैं ये निशान। वाकई में जब मोहब्बत होती है ना, तो ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि यार कल क्या होगा, ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये कल किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ये सवाल किसी को नहीं सूझता है। सब सिर्फ और सिर्फ आज में जी रहे होते हैं, जो कि बड़ी ही रेयर चीज है, और आज के टाइम पर हम सबसे ज्यादा यही ढूंढ रहे होते हैं, आज में जीने के तरीके। एंड लव इज दैट वन थिंग विच एक्चुअली मेक्स यू लर्न हाउ टू लिव इन टुडे। तो इंसान जो है वो हंसता गाता गुनगुनाता रिश्ते निभाता हुआ, बिना सोचे हुए कि यार ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, आज में जी रहा होता है। और ये बात भी कितनी प्यारी कही है कि आंखों में हल्के हल्के सपने हैं झलके कल के, कि डायरेक्शन हमने एक दूसरे से कभी नहीं पूछा ना डिसाइड किया, लेकिन हाँ, वो ख्वाब कि एक दूसरे के साथ हमेशा रहना है और एक कल भी होना चाहिए हमारा, वो भी आंखों के अंदर कहीं बसा हुआ होता है। एंड वेल, इस खूबसूरत लिरिक्स के साथ इस ब्यूटीफुल ट्रैक को प्ले करती हुई मैं यहाँ से चली और आपसे कहती हुई जाती हूँ कि हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
3: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच. मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना च लहरी. इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा.
2: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर. मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: फिलहाल तो मैडम चुनरी छूने मत दीजिए, बल्कि हमें भी एक दीजिए ताकि हम भी मुंह पे लगाएं और सूरज चाचू से अपने आप को टैन और जलने से बचाएं। 89.6 मिर्ची वन पर आ गया मस्त मौला गौरव। इतने कह सकता है कि शाम के नहीं अभी भी दोपहर के 4 बज रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। मौसम बिल्कुल एकदम जबरदस्त गर्मी वाला। 4:04
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: लेकिन सोचिए हम उस दौर से कितना आगे आ चुके हैं। एक जमाने में जब ऐसी गर्मी पड़ती थी और लू के थपेड़े चलते थे तो हम कूलर में पानी भर के सुख चैन से सोते थे, लेकिन आज एसी के बाहर निकलते ही बाहर की गर्मी से पैर थक थका जा रहे हैं, कप कपा जा रहे हैं। कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूं कि इस गर्मी के लिए हम और आप ही जिम्मेदार हैं, इसलिए पेड़ों को पानी देते रहिए ताकि ये आने वाली फ्यूचर जनरेशन को छाएं देते रहे और उसी छाओं में पलकर ये बच्चे बड़े होंगे। क्योंकि जिस तरह से माहौल गर्म का बन रहा है ना भाई, हमको लग रहा है इस बार हरारत काफी ज्यादा आने वाली, हरारा कतीर होने वाला है। फिलहाल इतना ही कहूंगा, आ गया मस्त मौला गौरव बातों की दुकान लेकर, ढेर सारी बातें आपके कानों तक पहुंचाएंगे और आम का स्वाद कैसे आप चख पाएंगे ये भी बताएंगे। इसके साथ ही साथ कतर के कोने कोने में और क्या चल रहा है, गानों के मिक्सर से लेकर पहचान कौन तक सब खिलवाएंगे। यही कान लगा के बस मिर्ची वॉल्यूम बढ़ाए लो भैया, शरारत गाना आ गया। थोड़ा आइटम नंबर से शुरुआत करते हैं। इट्स हॉट

0: Milchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La virtual la murga.
2: Milchi, murga.
3: Hello?
4: Hello, Sunil ji.
3: Haan ji.
4: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं.
3: किस चीज के जी सर?
4: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
3: वेरी गुड यार, ये तो बहुत बढ़िया.
4: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
3: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
4: हाँ जी.
3: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
4: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
3: कंडीशन वगैरह?
4: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक हैं आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
3: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना. कोई
4: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
3: क्या?
4: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
3: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
4: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला.
3: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
4: सर पुराना जो आपने
3: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो तो
4: सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
3: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
4: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
3: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
4: अरे अरे तो ये क्या
3: पुराना कहाँ से लाऊं?
4: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
3: पेट्रोल फालतू का. अच्छा. पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ.
5: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

आज शाम की चाय श्रीलंका वाली हो जाए। हाँ जी, सलोन टी की इवनिंग है और ये टेस्टिंग इवनिंग आज होगी कतारा कल्चरल विलेज में। यस, यूं तो कतर में हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन आज इंटरनेशनल टी डे का सेलिब्रेशन कह लें, 159 ईयर्स का जो एक्सीलेंस है सलोन टी इंडस्ट्री के साथ वो जुड़ा हुआ है। श्रीलंका हम भी जब गए थे तो हमने वहाँ बाग देखे और सलोन टी जो कि श्रीलंका की अपनी एक पहचान है। हाँ जी, एक जमाने में श्रीलंका को सलोन बोलते थे, इंडिया में रेडियो वहीं से यू नो ब्रॉडकास्ट होता था, उसी सलोन का रेडियो भी हमने देखा था। और अब सलोन टी की बात करें तो यस, ये एक इतिहास है, 150 सालों का वो काफिला जो आज आपको कतारा कल्चरल विलेज में अंडर द एजीज ऑफ एम्बेसी ऑफ श्रीलंका होने जा रहा है। मुझे लगता है अगर आप चाय के शौकीन हैं तो एक करक तो हवी भी यहाँ आपकी बनती है। वेल, हेरिटेज कह लें, इसे क्राफ्टमैनशिप कह लें, या फिर वो स्मेल जो इन चायों से निकल कर आती है उसका मजा लेना है तो कतारा कल्चरल विलेज की तरफ जाना है। एंड मस्ट मोलो गौरव इतना ही कहेगा, हम जब श्रीलंका गए थे तो हमने वहाँ की चाय भी ट्राई की एंड कॉफी वॉज ऑल्सो ऑसम। वेल, कुल मिलाकर इतना ही कहेंगे, 96 वर्ल्ड कप को अगर हम छोड़ दें सेमीफाइनल को, तो श्रीलंका से मेरी सारी खूबसूरत यादें 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: इश्क जैसा कुछ, लेकिन इश्क तो हमें हो गया है आपसे, तभी तो रोज शाम चले आते हैं बातों की दुकान लेकर। वेल फिलहाल, लेकिन इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कुछ कमाल होने वाला है, क्योंकि पहली बार 48 टीम्स एंट्री ले रही हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026। अब तक का मोस्ट सिग्निफिकेंट एडिशन इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि टीम्स की संख्या बढ़ गई है। 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करें, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको, एंड लार्जेस्ट वर्ल्ड कप एवर टिल डेट। यस, जहां पर टीम्स ज्यादा होंगी, मैचेस ज्यादा होंगे एंड होस्ट सिटीज भी ज्यादा होंगी। वेल, किसी भी प्रीवियस एडिशन से इस बार वर्ल्ड कप का जो टाइमलाइन है वो काफी लंबा है। एंड मैं आपको बता दूं, बहुत सारी टीमों को पहली बार मौका मिल रहा है। 104 मैचेस, गोल कितने होंगे ये तो आने वाला टाइम बताएगा। एंड इतना ही कहना चाहता हूं कि 11 जून से 19 जुलाई के बीच फुटबॉल के इस महासंग्राम में क्या मेसी अपनी टीम को एक बार फिर से ट्रॉफी डिफेंड करते हुए पाएंगे या फिर कोई नया चैंपियन आएगा, इसके लिए तो इंतजार कीजिए। एंड मेक्सिको, शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 टाइम किसी नेशन ने वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। यस, फीफा वर्ल्ड कप को 3rd टाइम मेक्सिको होस्ट करने जा रहा है। इससे पहले 1970, 86 एंड देन 40 साल के गैप में 2026। लेकिन मैं कहता हूं हमारे वहां कतर में जल्द लौटे फीफा वर्ल्ड कप, यही हम दुआ करेंगे, क्योंकि हमने जो फीफा के दिन देखे हैं ना यार, एक बार फिर से जीने का मन करता है। काश वो सब कुछ वापस आ जाए जहां पर कॉर्नर स्ट्रीट पर फैंस रात भर घूमते थे, सूख वाकिफ के अलग मजे थे एंड अलग अलग फैन जोन्स का अपना मजा था, म्यूजिक फेस्टिवल्स चल रहे थे। यार ये कोई नहीं कर पाएगा, ये मैक्सिको एक्सो भी नहीं कर पाएंगे जो कदर ने कर दिया। इस बात के लिए तुम प्राउड फील करते हैं। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
5: उससे भी ज्यादा।
3: लॉटरी लग गई?
5: उससे भी बड़ा।
3: तो फिर बताओ।
5: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
6: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रॉक डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो

0: अरिजीत सिंह की आवाज में खामोश का ये खूबसूरत सा गाना और यहाँ पर आपके कानों तक किसने पहुँचाया? देखो सजो, मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ कि बातें ये कभी आप भी मत भूलना कि गर्मी में है पानी जम के पीना, जितनी बोतल हो सके भर के रख दो वरना मम्मी डांटेंगी बोतल क्यों नहीं भरे। बिल्कुल मिलाकर यार गर्मी की एक याद ये जुड़ी है हमेशा माँ के साथ। हमारे और आपके पीछे कन्वर्सेशन आता था जिसमें मम्मी कहती थी पी रहा है तो बोतल भर के रख दियो। है जी, फिलहाल मौसम बहुत बेमान हो गया। तुम
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: 45 डिग्री सेल्सियस दिन का मैक्सिमम तापमान था, दिन का मिनिमम आज 31 पर आएगा। और दोस्तों मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं लेकिन हो सकता है आने वाले दो चार दिन में कहूं कि कतर में अब सुबह नहीं होती, सीधे दोपहर होती है और रात नहीं होती फिर से दोपहर हो जाती है। कुल मिलाकर जबरदस्त गर्मी का फेज है, हमें और आपको अपना ख्याल रखना है। हवाओं की लगातार रफ्तार जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बनी हुई है एंड कोशिश यही कीजिए कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, कीप ड्रिंकिंग एम्पल वाटर, क्योंकि यही है जो हमें इस गर्मी से बचाएगा। एंड फिलहाल के जुबिन नौटियाल की मीठी आवाज में अगला गाना कानों को सुकून दे जाएगा। मिर्ची गरम है गुरु।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, do you remember the first song you filmed for?
3: Of course, कस्तो मजा, परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे, और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे, और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
2: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
5: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद, इरशाद

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।
2: रक, रक।

0: मिर्ची पे गाना ये सुनाई मैंने, नाम है मेरा जो मिर्ची पे चिल्लाई मैंने।
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: हाँ जी, झांझरों के पैर रखता था भाई, संभाल संभाल के लड़की धोखा देगी। फिलहाल के लिए मस्त मौला गौरव आपके साथ है, धोखा नहीं देता हूँ। शाम के 5:04 हो गए और खेलेंगे।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और खेलेंगे वो जिसे कहते हैं। तो भाई आपको पहचानना है कि अगली आवाज जो मैं सुनाऊंगा वो किसकी आवाज है।
3: 19 to a dozen, मतलब उनकी बोलती बंद नहीं हो जाएगी। तो अक्षय के साथ हम बैठते थे, खाते थे, पीते थे, बिचिंग करते थे,
0: क्राइंग करते थे। अक्षय के साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे, ये कौन सी अदाकारा है जिनकी आवाज मैंने यहाँ सुनाई है? एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और पकड़ने की कोशिश कीजिए कौन सी अदाकारा है।
3: 19 to a dozen, मतलब उनकी बोलती बंद नहीं हो जाएगी। तो अक्षय के साथ हम बैठते थे, खाते थे, पीते थे, पिचिंग करते थे, क्राइंग करते।
0: एंड आपको हिंट में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि 1999 में जब ये एक्ट्रेस आई तो इनकी फिल्म ने रातों रात मचा दी तबाही, और फिल्म के हीरो को तो इतने लव लेटर्स मिले मेरे भाई की जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। 5000196 पर आपको इस आवाज को पकड़कर बताना है कि हमारा गौरव ये जो आपने सुनाई अब मुझे याद आ गया, ये फलाने एक्ट्रेस की आवाज है। एक बार फिर से आखिरी बार आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ।
3: 19 to a dozen, मतलब उनकी बोलती बंद नहीं हो जाएगी। तो अक्षय के साथ हम बैठते थे, खाते थे, पीते थे, पिचिंग करते थे, क्राइंग करते।
0: 5000196 पर वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए। आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं, इसलिए बस इतना ही कहूंगा जवाब जल्दी से ही लग रहा है मिल जाएगा। मैं फटाफट से लोगों को जवाब सुनाऊंगा, उसके लिए बस इंतजार कीजिए और अपना जवाब भेजते रहिए 5000196 पर वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर। और जब तलक आप मुझे जवाब भेज रहे हैं तब तलक हम आपको अरिजीत सिंह अकाशा की आवाज में जब तलक सुना ही देते हैं मिर्ची पर।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Mirci, burga. Hello.
2: से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: हाँ, बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये, मैं क्या वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: Oh my God.
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम, प्रॉब्लम
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली। एरोप्लेन भेजूं?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुची पुची कुची पुची. ओके स्वीटहार्ट बाय. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
1: गोलगप्पे नहीं होते मैम हमारे,
2: चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो.
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं.
1: क्या खाते हैं
2: मैम? मुर्गा
1: मैम, वो भी नहीं है.
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता. हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए.
3: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: हाय हाय तू मेरी बन जा सोनी सोनी इश्क विश्क का रिबाउंड, ये गाना आपके कानों तक पहुंचाया।
1: मस्त मौला गौरव।
0: और देवी और सजनों, शाम के जब बज जाते हैं 5 तो 5 से 6 के बीच हम खेलते हैं जनाब और पहचान कौन में एक आवाज आपके कानों में आती है, आपको पहचाननी होती है कि ये आवाज किस स्टार की है। अगर हम आज की बात करें तो ये आवाज जो आज मैंने आपको सुनाई है वो बहुत ध्यान से सुनकर बताना है कि ये किस एक्ट्रेस की आवाज है जो मैं आपके कानों में अभी पहुंचा रहा हूँ।
2: 19 to a dozen, मतलब उनकी बोलती बंद नहीं हो जाएगी। तो अक्षय के साथ हम बैठते थे, खाते थे, पीते थे, पिचिंग करते थे।
0: वेलकम मिलाकर मैंने यही कहा है कि ये किस एक्ट्रेस की आवाज, और जवाब आ रहे हैं। जी लोकेश।
3: हाय जनाब, मेरा नाम सोनू खान है और जिस आर्टिस्ट की आपने आवाज सुनाई है आई थिंक ये ममता कुलकर्णी है।
4: सॉन्ग इज अमीषा पटेल।
0: ओके, कोई माधुरी बोलता है, कोई बोलता है ये आवाज ममता कुलकर्णी की है, कोई बोलता है अमीषा पटेल की है। अब आपको डिसाइड करना है ये आवाज किसकी है।
2: 19 to a dozen, मतलब उनकी बोलती बंद नहीं हो जाएगी। तो अक्षय के साथ हम बैठते थे, खाते थे, पीते थे, पिचिंग करते थे।
0: 5 0 0 1 8 9 6 5 0 0 0 1 8 9 6 पर आपको अपना जवाब देना है। और अब एक स्पेशल मैसेज भाई, ये सुनते हैं ना आप, कहीं के भी रेडियो जॉकी किसी भी चैनल पर काम करते हैं, आपके लिए ये ऑक्सीजन से कम नहीं होता।
5: गुड इवनिंग गौरव भाई।
0: भाई गुड इवनिंग,
5: मनोज बोल रहा हूँ।
0: जी मनोज जी,
5: ड्यूटी जा रहा हूँ, बहुत अच्छा सनसेट हो रहा है।
0: अरे क्या बात है,
5: थोड़ी गर्मी फील हो रही है लेकिन ठीक है, एसी चल रहा है।
0: जी जी जी,
5: देखो आंसर तो मुझे नहीं पता लेकिन ये क्विज बहुत अच्छा है, कभी कभी ट्राई करता हूँ।
0: थैंक यू।
5: लेकिन आंसर नहीं पता, लेकिन आपको गुड इवनिंग कहने के लिए।
0: अरे मेरे भाई थैंक यू,
5: जब भी आपकी आवाज सुनते हैं तो मजा आ जाता है।
0: अरे शुक्रिया शुक्रिया,
5: थैंक यू फॉर आवर एंटरटेनमेंट और एवरीथिंग।
0: थैंक यू ब्रदर,
5: थैंक यू गौरव भाई,
0: थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और ऐसे जब मैसेजेस आते हैं तो ऐसा लगता है यार जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं जो लोगों को अच्छा लग रहा है। बस इसी से लगता है कि ऊपर वाला है जो देख रहा है और धीरे धीरे आप लोग के थ्रू अपना प्यार भेज रहा है। 89.6 मेरे जीवन पर, जवाब मत भूलिएगा, बताइए किसकी आवाज है।
2: 19 to a dozen, मतलब उनकी बोलती बंद नहीं हो जाएगी। तो अक्षय के साथ हम बैठते थे, खाते थे, पीते थे, पिचिंग करते थे।
0: 5 0 0 1 8 9 6 पर आपको जवाब देना है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने पहचाना है, कोई ममता कुलकर्णी, कोई माधुरी, कोई कहता अमीषा पटेल, एक ने विद्या बालन भी लिखा है, लेकिन आपको लग रहा है कौन है बताइए। अगली बार जवाब के साथ लौटेंगे मिर्ची पर। इट्स हॉट

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: पश्मीना धागों के संग ये गाना खत्म हुआ किसके संग मस्त मौला गौरव। और हम जब आगे देखे सजनों, हमारे साथ इस घंटे होता है गेम जिसका नाम होता है पहचान कौन। में एक आवाज आती है, आपको पहचाननी होती है कि आवाज किसकी है, और आज की आवाज कुछ यू है।
1: 19 to a dozen, मतलब उनकी बोलती बंद नहीं हो जाएगी। तो अक्षय के साथ हम बैठते थे, खाते थे, पीते थे, पिचिंग करते थे, क्राइंग करते,
0: मजा आता था। मतलब अक्षय के साथ इनको बहुत मजा आता था, कुल मिलाकर ये यही कहना चाह रही हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि आप बता पाएंगे क्या ये कौन है जिनके लिए इतनी तारीफें हो रही हैं, लेकिन लोग बता नहीं पा रहे, जवाब सही नहीं बता पा रहे।
2: भाईजान गुड इवनिंग, ये ममता कुलकर्णी का आवाज है। 100% अक्षय और ममता कुलकर्णी जी का डेफिनेटली मूवी हमने देखा है, एंड उससे समझ में आता है दिस इज बाय ममता कुलकर्णी। विश्वजीत दिस साइड, मिस यू ऑलवेज।
0: थैंक यू विश्वजीत जी। और कौन है हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है, जो सही जवाब दे पाएगा और बता पाएगा कि ये किसकी आवाज है?
3: अमीषा पटेल।
0: ओके, अमीषा पटेल की आवाज है ये, इन्होंने कहा है। एंड कुछ और लोग हैं जो जवाब के लिए लाइन में लगकर सही बता रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों की आवाज जो है वो सही नहीं आ पा रही है, पर हम पूरी कोशिश में है कि सही जवाब मिल जाए।
4: हेलो गौरव। हाँ जी, इरफान हियर। जी जी, मुझे ऐसा लग रहा है ये आलिया भट्ट की आवाज है।
0: ओके,
4: हो सकता है।
0: ओके ओके,
4: बताइए मुझे।
0: जी जी बताएंगे। हाँ जी, एक ने बोला अमीषा पटेल। और तो भाई जिन लोगों ने अमीषा पटेल का आज, पहले तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड मैंने जब हिंट दी तो मैंने कहा था 90s की बेस्ट हीरोइन जिनकी एक फिल्म रातों रात हिट हुई, और इस फिल्म के हीरो को अनगिनत लव लेटर्स मिले। एंड बात कर रहा था मैं कहो ना प्यार है के लिए। यस, अमीषा पटेल इज द राइट आंसर फॉर टुडे। मस्त मौला गौरव के साथ खेलिए रोज शाम 5 बजे के बाद। क्या पहचान कौन, मिर्ची इट्स हॉट।
5: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

मुड़ के ना देखो दिलबरो, मेरे दोस्त भी काश मुझे उधार देने के बाद मुझे मुड़ के ना देखे, मजा आ जाएगा। लेकिन वो कमबख्त मुझे पता है अगले ही दिन कॉल कर लगते कब देगा वापस, बहुत भरोसा रखते ना मुझ पे। फिलहाल अगर आपके पास है तो घर भेजिए, रेट्स मिल रहे अच्छे। राइट नाउ की बात करूं, एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाली भारतीय मुद्रा 26 रुपए 13 पैसे है, 26.13 INR। एक कतरी रियाल के बदले अगर हम बात करें श्रीलंकन रुपीस की 92.69, 92.69 रुपए श्रीलंकन रुपीस मिल जाएंगे। अगर इसके बाद हम पाकिस्तान की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.76 पाकिस्तानी रुपीज, तपाई को नेपाल पीस का रेट दाजू 1 कतरी रियाल के बदले 41.85 का बॉल चलेट दाई, हाँ जी हाजू 41.85 को नेपाली पीस का रेट बहनी घर पैसा भेजने का सही टाइम छो। अगर इसके बाद हम बात करें बंधु बांग्लादेशी टका का, एक्टा कतरियाल के बदले दादा 33.72, तो 33.72 बांग्लादेशी टका का रेट। मस्त मोलो गौरव के साथ ये था आईपी एक्सचेंज रेट, डाउनलोड नहीं किया कर लो भैया, रेट्स अच्छे मिल रहे हैं मिर्ची।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: Sham Shandar with Mirchi Gaurav. Only on 89.6 Mirchi 1. Qatar mein Bollywood ka Mirchi wala tadka. It's hot. Sham Shandar brought to you by Kim's Health Medical Center. Mirchi. Fresh maal.
1: मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शबीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Mirchi one, it's hot.

0: वाओ, हाडी संधू किरण बाजवा की आवाज में गाना सुनाया किसने मेरे भाई। और फिलहाल घड़ी का टाइम बता दें, शाम के 6:08 से ज्यादा होने को आ गए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और भाई हमने नया गेम खेलने की शुरुआत कर दी है, जहां पर हम गानों की करते हैं मिक्सिंग इन द मिक्सर ग्राइंडर।
1: गानों की मिक्सिंग,
0: हाँ जी, और गानों की मिक्सिंग में हम दो गानों की मिक्सिंग करके गाना लाए हैं आपके पास। आपको पकड़ना है कि ये कौन सा गाना है जनाब, जो हम यहाँ आपको बार बार सुनाएंगे, एंड आपको पकड़ना है इसमें कौन से दो गाने लगातार चल रहे हैं। हाँ जी, जैसे कि आज के गाने कुछ यूं हैं। हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ जी, 5000 1896 पर गानों की मिक्सी से ये जो इंग्रेडिएंट बनाया है, बताइए ये कौन सा गाना है जो मैंने आपके कानों में पहुंचाया है। हाँ, 5000 1896 पर। हिंट नहीं दूंगा, दोनों ही गानों का सिंगर एक आदमी है। वेल, इस उम्मीद में कि आपने अब तक पकड़ लिया है और आपको पता लग गया है, तो इंतजार किस बात का है मेरे दोस्त। 5000 1896 पर वॉइस नोट अपना जवाब भेजो और बोलो गौरव जो आप बता रहे हैं वो ये दो गाने हैं। हाँ जी, 5000 1896 पर मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल साडी गली में लहमर हुसैनपुरी के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ। मिर्ची थॉट।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. Na viva la murga. Energy, murga.
2: Hello.
3: Is that Sanjeev?
2: Yeah, I'm speaking.
3: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
2: Okay.
3: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
2: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
3: ओके.
2: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
3: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
2: मैंने 2 साल काम किया एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
4: चुप कर. 2 साल काम किया एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
2: सॉरी सर.
3: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
2: कस्टमर्स आए जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड
4: करते. बकवास बनकर, बकवास बनकर. कूलली तू करता था? कूलली दांत अंदर कर.
2: हम करते थे सेटिस्फाइड
4: कर. बकवास बनकर, बकवास बनकर.
2: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
3: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
2: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
4: शट अप.
2: अच्छी बोलते हैं.
4: शट अप.
2: लोग लिखे हैं उन्हें.
4: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका. कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
2: अभी तक
4: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
2: बोल
4: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार. इंसान बना नहीं है.
2: खुद को देखा आपने कभी?
3: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: 89.6 मिर्ची वन पर आपके साथ है। और दोस्तों मेरे साथ इस घंटे अब से आप खेलेंगे
1: गानों की मिक्सी।
0: यस, गानों की मिक्सी में दो गाने पीस देंगे और आपको सुनाएंगे, बताना पड़ेगा कौन सा गाना है। हाँ जी, मैंने यही पूछा था ये कौन से दो गाने हैं जो मैंने यहाँ मिर्ची पर चलाए, और देखिए जवाब आ गया है एकदम। सबसे पहला करेक्ट आंसर ही प्ले करने जा रहा हूँ।
2: हेलो, एक गाना जो है
0: जी बड़े भाई
2: मिका पाजी का है।
0: ओके,
2: एक गाना है आज की पार्टी मेरी तरफ से, और एक गाना जो है वो सावन में लग गई आग दिल में रहा है।
0: क्या बात है, जबरदस्त कान की तेजी। 3 सेकंड के इस म्यूजिक को आप पकड़ ले रहे हैं भाई, इससे पता लगता है बलराम जी आप असली चैंपियन बन गए हैं, और ऐसे ही रोज आपको भी मेरे साथ खेलना है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और मगरिब की तरफ बढ़ते हैं मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
6: उससे भी ज्यादा।
5: लॉटरी लग गई?
6: उससे भी बड़ा।
5: तो फिर बताओ।
6: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
4: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद।

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Dosti kai kusule madam. No sorry, no thank you.
2: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए
3: तो मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा
4: खूब मिलेगा खूब मिलेगा
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट इट्स

0: क्या आप भी कभी कभी उठते हैं सुबह सवेरे ये सपना देखते हैं कि आप आंखें खोल रहे हैं, सामने बीच फ्रंट, आप उठकर ब्रश करते हुए बढ़िया नाश्ता कर रहे हैं, हवाएं आ रही हैं एंड आपको लग रहा है यार आप इस लग्जरी विला के मालिक हैं, तो सपना सच होने जा रहा है। अरे भाई, क्योंकि समयस्मा रिसोर्ट एंड बीच प्रोजेक्ट जो है उसके लिए अब कतर ने फॉरेन प्रॉपर्टी ओनरशिप अलाउ कर दी है। यस, हम बता दें कतर अब एक्सपेंड कर रहा है और दुनिया भर के रियल स्टेट इन्वेस्टर्स को बुला रहा है। कह रहा है अगर आप समयस्मा रिसोर्ट एंड बीच प्रोजेक्ट में अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हैं सो यू कैन ओन प्रॉपर्टी अंडर कैबिनेट डिसीजन नंबर 21 ऑफ 2026, यानी कुल मिलाकर ऑफिशियल गैजेट पर साइन हो चुका है, अप्रूव कर दिया है एमएनए जाइने शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने। उन सभी अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब आने वाले टाइम में जब समयस्मा बीच एंड रिसोर्ट बनेगा, इस बीच प्रोजेक्ट पर आपका अपना विला हो सकता है जो सी फेसिंग हो और आपका वो सपना सच हो जाए जो शायद आपने भारत के किसी शहर में देखा होगा, पाकिस्तान किसी शहर में देखा होगा, या श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी, अब आप वहां का सपना यहां पूरा कर पाएंगे एंड कतर में अपनी प्रॉपर्टी, आने वाले टाइम में पैसे ही पैसे होंगे बाबू भैया। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
2: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
1: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

विशाल डडलानी पायल देव के आवाज में, कल लेना जाना सबको लेके जाना भरे बाजार में। लेकिन इंडियन टीम को देखना तो अब आराम से उठ जाना। हाँ जी, मैचों के समय में बदलाव हो गया। असल में इंडियन टीम जा रही है आपके लिए खेलने आयरलैंड और इंग्लैंड, और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने तय किया है कि T20 मैचेस का टाइम बदल दिया जाएगा। ये पहले इंडियन टाइम से रात 11 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन अब 10 बजे रात से ही शुरू हो जाएगा। वेल, इसकी वजह से हम ये मैचेस इंडिया में 10 बजे मतलब जल्दी देख पाएंगे, वरना आपको पता ही है जिस हिसाब से भी फीफा वर्ल्ड कप के साथ भी हुआ है कि चाइना और इंडिया जैसी कंट्री जहां पर दुनिया के 250 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, उन दोनों ही देशों में राइट्स नहीं बिक पाए क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा अलग था। ऐसे में बहुत ही चालाकी भरा फैसला लिया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने। वो जानते हैं कि व्यूअरशिप हाई रहेगी जब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बैलेंस किया जाएगा मामला। तो फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ, टीम इंडिया को ऑल दी बेस्ट, एंड इस सीरीज में क्या कमाल करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि क्रिकेट की दुनिया में एक खबर जो चौंकाने वाली है, MI रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट सूर्य कुमार यादव ने डिलीट कर दिए। अब ये कहीं इशारा तो नहीं है उनकी छुट्टी का, या आने वाले टाइम में T20 की कप्तानी तो गई है, T20 टीम से भी ना चले जाए। इसलिए सूर्या भैया, जितना च्युइंगम खा रहे हो उससे ज्यादा ना आप बॉडी बना के ना मैच में खेलने की कोशिश करो, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिकेट में गुरु सब कुछ परफॉर्मेंस पे ही बेस्ड है। मिर्ची थॉट।

0: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
1: सर, कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, क्या करूं?
0: ओ माय गॉड, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो वाला, तुम्ही दिन चढ़े, उसी पिक्चर से। अब जब आप इस तरह के गाने भी सुनते हैं तो लगता है कि दौर के साथ बदली हैं चीजें। हाँ जी, कॉकटेल 2 से ये गाना सुनाया किसने? फिलहाल अगले घड़ी का टाइम बताएंगे, शाम के 7:06 होने को आएंगे।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: अब मैं ये कहूँ तो भाई, एक ही दिल है, कतर न जाने कितनी बार जीत लेता है। वैसे बात बताएं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन ने एक डिसीजन जो है 2026 का, जो कि डिसीजन नंबर 5 है, वो एक्सपेंड कर दिया है। हाँ जी, और ये है कतर के उन पब्लिक स्कूल्स में बच्चों को मिलने वाले फी एग्जेम्पशन का। हाँ जी, अब ये फी कैसी है? स्कूल एंड टेक्स्ट बुक फीस वेव्ड फॉर स्पेसिफिक नॉन कतारी स्टूडेंट। कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर अगर आप आते हैं तो कतारी ट्रेवल डॉक्यूमेंट एंड परमानेंट रेसिडेंट कार्ड के साथ अब आप भी एज अ नॉन कतारी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ कतर आप टेक्स्ट बुक के लिए बिल्कुल पे नहीं करेंगे। स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस से भी आप एग्जेम्प्ट किए जाएंगे। हालांकि उसकी कुछ कैटेगरीज हैं जो स्कूल वालों ने क्लियर की है, एंड आप अगर कतर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप बहुत लकी हैं, आपको ये वाली छूट मिल ली है। वरना आज के दौर में किताबें खरीद के माँ बाप की सांसें जो हैं फूल जाती हैं। जितना ही कहना चाहते हैं, वो जितने ही प्यार से आपके लिए किताबें खरीदते हैं, नए बस्ते, बैग लाते हैं, बॉटल देते हैं, लंच बॉक्स, टिफिन सब लाते हैं, आपसे बस पढ़ाई में अच्छे नंबरों की उम्मीद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, हमसे भी करते थे और हमने पूरी कोशिश की कि एग्जाम में कम से कम पास तो हो जाए, जिससे मार थोड़ी पड़े लेकिन हम आगे बढ़ते जाए, बढ़ गए जिंदगी में आगे। लेकिन आप जरूर पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो नंबर 1 रैंक लाएंगे और फिर पूरी दुनिया कहेगी आ रही भैया, एकदम होशियार लड़की लड़के आ रहे, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mechi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mechi, burga.
1: हेलो
2: हेलो नवनीत
1: या
2: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
1: हाय नवेद,
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
2: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
2: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
1: हाँ?
2: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
1: या मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
2: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
1: मिस्टर दिलीप।
2: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
1: मैं क्या कुछ गलत
2: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
1: अब ऐसी बात क्या,
2: ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: अब मैं क्या
2: पूछूं यार, तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
2: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ यानी कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो तरफ से मैं माफी
2: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफिया मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं।
1: नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
2: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
1: कुकड़ुकू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

कल की बात लगती है, 4 साल बीत गए वर्ल्ड कप को हुए। 89.6 मेरे जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। फुटबॉल वर्ल्ड कप 4 सालों में एक बार होता है, लेकिन क्योंकि कतर में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ तो वो समर की जगह विंटर्स में हुआ, यानी कि नवंबर में, इसलिए एक बार फिर से जब वर्ल्ड कप वापस से जून में आया है तो कह सकते हैं 3 साल 6 महीनों के अंदर वापस लौट आया है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अब तैयारी पूरी है, 2 दिन और बचे हैं, और ऐसे में हमारे अल नाबी के फैंस बोले तो कतर फुटबॉल टीम के फैंस जो हैं वो धीरे धीरे अमेरिका के लिए उड़ान भर रहे हैं, एंड जहाँ जहाँ हमारे टीम का मैच होगा ये अल नाबी सपोर्टर्स वहाँ होंगे, और इनकी इस शानदार यात्रा को जानदार बनाने के लिए हमारे कतर एयरवेज ने कतर फैन बॉक्स गिफ्ट किया है। यस, प्लेन के अंदर इनको गुडीज मिले हैं जिसमें एकदम खूबसूरत सी कतर के झंडे से सजी एक फुटबॉल है, उसके अलावा कुछ और गुडीज भी उन सारे फैंस को दिए गए जो फ्लाइट लेकर जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये फैन बॉक्स इनके काम भी आने वाला है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल चीजें भी हैं, एंड ये साथ में मिलकर जब अल नाबी को चीयर करेंगे, आई एम श्योर हम इतिहास रचेंगे, अगले दौर तक बढ़ेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि क्यों है कतर एशियन फुटबॉल का सबसे बड़ा चैंपियन। इस उम्मीद में कि हमारी टीम इस बार कुछ शानदार करकर लौटेगी, मस्त मौला गौरव कहता है टीम कतर को ऑल द बेस्ट। 89.6 मिर्ची 1 की तरफ से मिर्ची थॉट।

0: में जी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची इट्स हॉट। शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
5: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

इमाम कतर में पधार रहे हैं। अरे बात करें हम सूख वाकिफ में लगने वाले तीसरे हम्बा फेस्टिवल की। यस, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन मैंगो फेस्टिवल इज ऑल सेट और ये ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सूख वाकिफ में 18 जून से लग जाएगा और 10 दिनों तक रोज शाम 4 से 10 हम दुनिया भर की वैरायटी खरीदते रहेंगे और इंडिया वाले मैंगो का स्वाद यहाँ कतर में लेते रहेंगे। तो भाई जेब में पैसे बचा लो क्योंकि ये फलों का आम है जो राजा, समझे। इसके लिए थोड़ा सा पैसा लगता है ज्यादा, पर एक बार इसका स्वाद आपके मुंह के अंदर गया तो विश्वास कीजिए प्राइसलेस टेस्ट है ये। मतलब दुनिया में आप किसी भी फल से वो सुख नहीं पाते जो आम से पाते हैं। अब चाहे अमरस बना के पीजिए, मैंगो शेक बना के पीजिए या फिर इसके अलावा आप आम की कोई भी डिश बना लीजिए, आपको मजा ही आने वाला है। इस उम्मीद में कि हम और आप मुलाकात करेंगे, कहीं तो कहीं टकराएंगे और इस हम्बा फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे जो कि इंडियन एम्बेसी लेकर आ रही है। मस्त मौलक और आपके साथ 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मौका है मिलन का।
1: मस्त मौला, मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव। 89.6
0: मिर्चीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ। देवी और सजनों तैयार हो जाइए, आज कतर के आसमानों की बात ही अलग है। हां जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज कंजंक्शन है वीनस और जुपिटर का, जो आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। यस, रात 8:55 तक आपको आज कतर के आसमानों में ये दिखाई देने वाला है, जहां पर वीनस एंड जुपिटर दोनों जो हैं आमने सामने रहेंगे और हमें कुछ अच्छा फील कराएंगे। लेकिन उसको अच्छा फील करने के लिए आपको आसमानों की तरफ देखना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, जिस उम्मीद में कि मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं ये नज़ारा ज़रूर देखूंगा, आप भी देखिए। मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, क्योंकि आज कतर के आसमान में एक और मौका, सेलेस्टियल एक तरह से ये सेलिब्रेशन होता है, मुझे लगता है एक ऐसा एरियल सेलिब्रेशन जो दुनिया में बहुत कम देशों में ही दिखाई पड़ता है, और हमारे कतर में जब ये दिखाई पड़ रहा है तो मौका है कि हम इस मिलन को यहाँ देख पाए। इस उम्मीद में कि आप इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे और आने वाले टाइम में अपने आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि मैंने जुपिटर एंड वीनस का कंजंक्शन देखा, ये एक माहौल बनाएगा, एंड आप फोटो जरूर खींचना अगर अच्छा कैमरा है तो। इस उम्मीद में कि आप ये काम करेंगे, मैं स्मॉल और ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से, शाम शानदार में यही मिर्ची पर। तब तक हबीबी मा सलामा, इट्स हॉट।

0: Mirchi Helpline?
1: Mirchi Helpline, what is the question?
0: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ. कॉलेज में कैसे जाऊँ?
1: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना.
2: साले का खोपड़ी तोड़ साले का.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और कसम से दोस्त, रोग अगर आपको कोई हो जाए ना, इश्क का रोग हो, जहनी कोई रोग हो, कुछ भी हो, लोग इतनी राय देने आ जाते हैं, अपना अपना नुस्खा बताने आ जाते हैं कि क्या कहा जाए। कतील शिफाई साहब का बड़ा एक सटीक शेर है, कहते हैं कि जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बट ना जाए तेरा बीमार मसीहाओं में। वाह जी वाह, इतने सारे लोग आ जाते हैं जो कि अपने अपने तरीके बता रहे होते हैं कि ये करके देख यार इससे बेहतर हो जाएगा, वो करके देख यार उससे बेहतर हो जाएगा। इन्हीं सब में इंसान और खराब हो जाता है, क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं कर पाता कि यार क्या करके देखूं कि बेहतर हो जाऊं। जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बट ना जाए तेरा बीमार मसीहाओं में। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, स्वागत है आपका शो में। एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो सुनील जी।
2: हाँ जी
3: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ। सर कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं।
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
2: यार, भी तो, बहुत बड़ी
3: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
2: ठीक है। अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
3: हाँ जी।
2: इसी का पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
2: कंडीशन वगैरह?
3: नहीं सर, कोई सर कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: वो तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते ना अपने, कोई ज्यादा।
3: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
2: क्या?
3: पुराना लाइए, नया ले जाइए।
2: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला।
2: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
3: सर पुराना जो आपने
2: पुराना तो जल के वो खत्म कर दिया हो
3: तो सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
2: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है। वाह वाह जी, वाह वाह, थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है।
3: अरे अरे तो ये क्या तो
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा। ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना? यार कमाल कर रहे हैं आप।
2: पेट्रोल फालतू का।
3: अच्छा।
2: पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ।
4: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है। सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और वक्त है आपको रूबरू कराने का
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: मिर्ची महफिल पर आज के हमारे शायर से, बिल्कुल जी, और आज जिन शायर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है फरत एहसास साहब। बिल्कुल बीबीसी के साथ एसोसिएटेड रहे, ऑल इंडिया रेडियो के साथ एसोसिएटेड रहे। 1950 में बहराइच में जन्मे फरत एहसास साहब, अभी तो दिल्ली में रहते हैं एंड इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोमिनेंट पोएट्स इस वक्त के। और उनका एक बड़ा ही बेहतरीन सा शेर है जो कि जिंदगी की सच्चाइयों को बयां करता है कि कभी कभी साथ में रहने से बेहतर खुद खुश रहना जब आ जाता है, जब मुद्दा बन जाता है। फरत एहसास साहब लिखते हैं कि हम बहुत खुश थे मगर एक दिन हमारे दरमिया, हम बहुत खुश थे मगर एक दिन हमारे दरमिया कुछ अलग से और खुश होने की कोशिश आ गई। आए हाय हाय, ये जो अलग से और खुश होने की कोशिश होती है ना, यही न जाने कितनी रिलेशनशिप्स की लास्ट नेल इन द कॉफिन, आखिरी सांस होती है। हम बहुत खुश थे मगर एक दिन हमारे दरमिया कुछ अलग से और खुश होने की कोशिश आ गई। ये अलग से और खुश होने की कोशिश साथ ही की बनी रहे, मेरी तो आपसे यही उम्मीद रहेगी। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो तीन बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आप कताशी है आपके साथ और कभी कभी ना बार इज वेरी लो। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जिंदगी में किसी को खुश करने के लिए किसी का हाल पूछना भर इतना सा छोटा सा काम करना भर काफी होता है कई बार। फहमी बदायूनी साहब का शेर है, कहते हैं कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। वाजीवा, लिटरली अगर आप परेशान हो ना और आपके जहन में कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है जो आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, जो आप बोल नहीं पा रहे हो, अगर कोई आके बस कंधे पे हाथ रख के पूछ ले कि दोस्त क्या दिक्कत है, क्या हो गया, और अगर वो इंसान आके पूछ ले जिसका दर्द हो, तब तो क्या ही बात है। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। Stay tuned to Mirchi Mehfil, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
4: ऑफ कोर्स, कस्तू मजा, परिणीता से, और शिलीगुड़ में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था. इतने लोग थे, और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट. सो हम लोग ट्रेन पे थे, और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता. एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता.
3: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन. परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आपको आज का पहला ताशी अनप्लग्ड। चलिए आपको मैं सुनाऊं जावेद साहब का लिखा हुआ और हरिहरन साहब का गाया हुआ। हाँ जी ओए होए होए होए हरिहरन साहब हैं, साधना सरगम जी हैं इसमें, और क्या तो यार ये गाना है, इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट

इस नगमे के बाद सवाल ये भी बनता है कि दोस्त जावेद अख्तर साहब का लिखा आपका सबसे पसंदीदा कलाम, आपका सबसे पसंदीदा नगमा कौन सा है? लिख भेजे मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
1: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

ये तो हम सब जानते हैं कि शोले फिल्म कम्प्लीटली ओरिजिनल नहीं थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म के ट्रेसेस सिमिलैरिटीज आपको बहुत सारी वेस्टर्न फिल्म्स और इंडियन सिनेमा की फिल्म्स में भी दिखेंगी, जिनमें से एक फिल्म है ये जिसका गाना हमने सुना था अभी, मेरा गांव मेरा देश, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मास्टर डायरेक्टर राज खोसला ने, जिन्हें इंडियन सिनेमा में नॉयर फिल्म्स या डार्क फिल्म्स का पायनियर भी कहा जाता है। नॉयर या डार्क फिल्म्स जिनमें होता है सस्पेंस, मिस्ट्री, मर्डर, किडनैप, धोखा, लूट, मार, वायलेंस, सेक्सुअलिटी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी ऐसी डार्क डार्क सी रहती है, जैसे पूरी फिल्म में अंधेरा हो, लाइट गई हुई है। वैसे तो बहुत से डायरेक्टर्स ने डार्क फिल्में बनाई हैं, बट राज खोसला साहब वॉज अ मास्टर इन दिस क्राफ्ट। उनकी डायरेक्शन की जर्नी की शुरुआत तो हुई थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर टू गुरुदत्त साहब, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर मैं हूँ चारू आपके साथ, पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: से बोल रहे
4: हैं? हाँ जी।
5: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
4: या
5: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
4: हाँ, बोलिए।
5: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
4: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
5: अब आपको ये, मैं क्या वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
4: Oh my God.
5: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
4: नहीं मैम, प्रॉब्लम
5: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
4: चना दाल, चना कबूली। एरोप्लेन भेजूं?
5: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
4: सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
5: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
4: Hello.
5: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुची पुची कुची पुची। ओके स्वीटहार्ट, बाय। हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
4: गोलगप्पे नहीं होते,
5: चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
4: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
5: लंबे वाले
4: नहीं है वो।
5: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
4: क्या खाते हैं मैम?
5: मुर्गा
4: मैम, वो भी नहीं है।
5: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
4: मैम ये हमें नहीं
5: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
4: हाँ जी मैम बताइए।
0: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
4: आपकी आवाज में काफी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आज बातें हो रही हैं 50s, 60s, 70s के वन ऑफ द प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स राज खोसला साहब की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई इनका जन्म 1925 में पंजाब में हुआ था। अच्छा फिर कुछ सालों बाद इनकी फैमिली पंजाब से बॉम्बे आ गई। पढ़ाई के साथ साथ इनको म्यूजिक का बहुत शौक था। इन्होंने म्यूजिक में सिंगिंग में फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली। इनफैक्ट जब ये बड़े हुए तो केएल सहगल साहब के साथ, केएल सहगल साहब इनके घर के पास ही रहते थे, उनके यहाँ पे जाते थे, उनके साथ रियाज भी करते थे। इट वॉज एक्टर सिंगर केएल सहगल साहब जिन्होंने इनको सजेस्ट किया कि भाई तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम भी जरा रेडियो पे या फिल्मों में गाने का ट्राई करो। और ये निकल गए ट्राई करने। इनको क्या पता था कि ये जो ले हैं तो पहुंचेंगे गुरुदत्त साहब के पास और उसके बाद बन जाएंगे इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्टर्स। इस जर्नी की भी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए पुरानी जीन्स ऑन मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.
0: Purani Jeans with Charu only

मेरा साया फिल्म से ये गाना। आज पुरानी जीन्स पर हम जो गाने सुन रहे हैं ना, वो ज्यादातर राज खोसला साहब की फिल्मों से हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज खोसला साहब इंडियन सिनेमा के बड़े डायरेक्टर्स में से एक। इनकी सिर्फ फिल्में तोप नहीं होती थी, इन फिल्मों का म्यूजिक भी डोप होता था, बिकॉज राज खोसला साहब वॉज अ ट्रेन्ड म्यूजिशियन। इनफैक्ट ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर। अपने नेबर एक्टर सिंगर KL सहगल के सजेशन पे ये भी फिल्मों में गाना गाने आजमाने के लिए चले गए। कुछ एक दो फिल्मों में इन्होंने गाना गाया भी और फिर ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिक स्टाफ में शामिल हो गए। ये मैं लेट 40s की बात कर रही हूँ, जहाँ पे इन्होंने एक फिल्म में छोटा सा रोल भी किया था, एक हीरोइन के लिए बॉडी डबल का रोल। मतलब उस हीरोइन के लिए घुड़सवारी का एक सीन शूट करना था, तो इन्होंने उसकी जगह पे शूट किया विग वगैरह लगा के। बट ही रियली वॉन्टेड टू बी अ प्ले बैक सिंगर। लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे उनकी लाइफ में देवानंद जैसा दोस्त और गुरुदत्त जैसा मेंटर आने वाला है, कि आने वाले कुछ सालों में वो एक सुपरहिट फिल्म, एक क्राइम थ्रिलर CID डायरेक्ट करने वाले हैं। इस बारे में करेंगे बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Dani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Yeah.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: Only on मिर्ची It's hot।
3: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है? शाहिद कपूर। बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
4: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क विश्क ऑब्वियसली। द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन।
3: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

इंडियन सिनेमा में डार्क फिल्म्स बनाने वाले डायरेक्टर्स में से एक बड़ा नाम है राज खोसला साहब का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन आपको पता है खोसला साहब को म्यूजिक से इतना प्यार था, इतने पैशनेट थे वो ट्रेंड सिंगर भी थे, वो फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। और इसी के लिए जब वो लेट 40s में स्ट्रगल कर रहे थे तब वो मिले देवानंद साहब से। देवानंद साहब ने पहचान लिया कि इस लड़के में कोई बात है, इसको चांस देना चाहिए। उसी दौरान देवानंद साहब की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च हो रही थी, जिसकी पहली फिल्म बाजी डायरेक्ट कर रहे थे देवानंद के दोस्त गुरुदत्त साहब। और तब देवानंद ने राज खोसला साहब को सजेस्ट किया कि भाई तुम मेरे इस फ्रेंड को जो मेरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है उसको असिस्ट क्यों नहीं करते, उसको असिस्टेंट डायरेक्टर की जरूरत है। खोसला साहब ने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते। और जब वो गुरुदत्त साहब से मिलने पहुंचे, उस मुलाकात में क्या हुआ करते हैं इस बारे में बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जींस पर और

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
1: सर आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
2: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।
3: रुक, रुक,

0: रात के बच्चों के हैं 10 मिर्ची पे। शो का नाम पुरानी जीन्स।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: वालिन साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाज कदम भी चलना तो पोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: ना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम न रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे,
1: अच्छा जी मैं हारी चलो जाना,
0: देखी सबकी यारी मेरा दिल जला।
2: डायरेक्टर राज खोसला जब फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे लेट 40s में, तब उनकी लाइफ में फरिश्ते दोस्त बनकर आए देवानंद। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। देवानंद साहब ने इनको कहा कि भाई मेरी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स के अंडर एक फिल्म बन रही है जिसे मेरा दोस्त गुरुदत्त डायरेक्ट कर रहा है, उसकी भी ये पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर, उसे एक असिस्टेंट की जरूरत है, तुम उससे जाके मिलो, हो सकता है तुमको गाने का मौका भी मिल जाए। भैया 1951 की बाजी फिल्म थी। और खोसला साहब जब गुरुदत्त से मिलने गए तो गुरुदत्त साहब ने उनसे पहला सवाल पूछा, क्या तुमने कभी पहले किसी फिल्म में असिस्ट किया है? इन्होंने सफेद झूठ बोल दिया हाँ। फिर दूसरा सवाल पूछा, क्या तुमको हिंदी आती है? इन्होंने फिर सफेद झूठ बोल दिया हाँ। भाई खोसला साहब और उनका परिवार काफी टाइम तक पंजाब में रहा था, जहाँ पे उस टाइम उर्दू पढ़ाई जाती थी, तो उनको उर्दू आती थी लेकिन हिंदी नहीं आती थी। पर ये झूठ जो इन्होंने बोले तो गुरुदत्त साहब ने कहा कि ठीक है कल से आ जाओ मुझे असिस्ट करने। इस मीटिंग से बाहर निकलते ही सबसे पहली चीज जो खोसला साहब ने की वो हिंदी सिखाने वाली किताब खरीदी और गुरुदत्त साहब को उनकी फिल्मों में अर्ली 50s में असिस्ट करना शुरू कर दिया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Mirchi
1: Stories. 24 घंटे ही रहेंगी
2: यार। तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सीआईडी फिल्म से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था गुरुदत्त साहब ने और डायरेक्ट किया था उनके मेंटी, उनके शागिर्द डायरेक्टर राज खोसला ने। लेट 50s में ना गुरुदत्त साहब एक फिल्म बनाना चाह रहे थे वहीदा रहमान और सुनील दत्त के साथ। फिल्म का नाम था राज। फिल्म अनाउंस भी हो गई थी लेकिन कुछ ही दिनों बाद बंद कर दी गई। फिर अर्ली 60s में वापस ये फिल्म बनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं बनी। लेकिन गुरुदत्त साहब के शागिर्द उनके मेंटी राज खोसला साहब ये स्क्रिप्ट भूल नहीं पाए, जो कि एक नॉवल द वुमन इन व्हाइट पर बेस्ड थी। राज खोसला साहब ने वही स्क्रिप्ट यूज करके 1964 में एक ब्रिलियंट फिल्म बनाई। फिल्म का नाम वो कौन थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

पुरानी जींस पर आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर राज खोसला साहब की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो डायरेक्टर जिन्होंने इंडियन सिनेमा में डार्क फिल्म्स को एक नई डेफिनेशन दी। ये सस्पेंस थ्रिलर जिसका हमने अभी गाना सुना, मेरा साया फिल्म, ये भी उन्होंने डायरेक्ट की थी। अच्छा, क्योंकि खोसला साहब खुद म्यूजिक में ट्रेंड थे, उनकी फिल्मों का म्यूजिक भी उनकी USP होता था। तो एक फिल्म के म्यूजिक में ना एक म्यूजिक कंपोजर थे, उन्होंने एक ट्यून इनको सुनाई लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दी। एक बार नहीं बल्कि 5 बार रिजेक्ट कर दी, लेकिन म्यूजिक कंपोजर इस ट्यून को लेकर बहुत श्योर थे। उन्होंने फिल्म के हीरो से बात की कि भाई आप जरा डायरेक्टर साहब को समझाइए, ये बहुत अच्छा गाना बनने वाला है। इस बार खोसला साहब ने फिल्म के हीरो के साथ बैठकर ये धुन वापस से सुनी और ऐसा सुनने में आता है कि धुन सुनते सुनते वो अचानक कमरे से बाहर चले गए, दूसरे कमरे से एक चप्पल उठा के लाए और खुद को चप्पल से मारने लग गए कि ये धुन मुझे कैसे नहीं पसंद आई। वो म्यूजिक कंपोजर थे मदन मोहन, वो फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, वो फिल्म थी 1964 की वो कौन थी और वो गाना था लता मंगेशकर की आवाज में दिस आइकॉनिक सॉन्ग। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स राज खोसला एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन थैंक्स टू देवानंद की टैलेंट पहचानने की कला, राज खोसला डायरेक्टर बन गए। देवानंद साहब ने उनको अपनी पहली होम प्रोडक्शन बाजी फिल्म में डायरेक्टर गुरुदत्त के साथ असिस्टेंट डायरेक्शन करने का मौका दिया। इसके बाद दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्में की जिसने देवानंद साहब के करियर को काफी पुश दिया। CIG, काला पानी, 16 साल, बम्बई का बाबू। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में ना राज खोसला साहब ने शेयर किया था कि राज खोसला साहब जिस तरह से गाने शूट करते थे, जो एक्चुअली उनकी स्पेशलिटी थी, उससे देवानंद साहब कई बार थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते थे। जैसे गाना था जिसमें देवानंद साहब को सिर्फ चलते रहना होता है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। तो देवानंद साहब ने खोसला साहब से पूछा कि भाई मैं इस गाने में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्योंकि उनको ऐसे बहुत आदत थी एक्टिंग करते हुए अपने हाथ इस्तेमाल करने की। तो खोसला साहब ने उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी कि तुमको चलना है और हैंडसम दिखना है और कुछ नहीं करना है। और उस गाने में देवानंद साहब क्या चले हैं और क्या हैंडसम दिखे हैं। CID फिल्म का ये गाना पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

अब बहनों भाइयों, अब मेरा साया फिल्म का ये गीत उस साल गीतमाला में चौथे पायदान पर रहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और सिर्फ यही गाना नहीं, डायरेक्टर राज खोसला की फिल्मों के कई गाने इस चार्ट में, इस काउंटडाउन में टॉप पे थे। राज खोसला साहब उन डायरेक्टर्स में से एक थे जिन्हें हम म्यूजिकल डायरेक्टर बोल सकते हैं, मतलब वो डायरेक्टर जिनकी फिल्में तो टॉप होती थी, म्यूजिक भी एकदम डोप होता था। और इनके केस में तो ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि खुद ये एक ट्रेंड सिंगर थे। एज डायरेक्टर अपने 35 साल के करियर में उन्होंने कुछ 25 फिल्में डायरेक्ट की होंगी और ऑलमोस्ट सभी का म्यूजिक क्या म्यूजिक रहा है। क्या कवाली, क्या गजल, क्या सूफी कविताएं, क्या रोमांस और क्या फोक सॉन्ग्स, सभी को जगह मिली है राज खोसला साहब की फिल्मों में। खास करके फोक सॉन्ग्स की बात करें तो उनकी हर फिल्म में ऐसा कोई सॉन्ग होता था जिसमें फोक का फ्लेवर होता था, जैसे कि ये हमने सुना था मेरा साया का आइकॉनिक सॉन्ग झुमका गिरा रे, एंड द नेक्स्ट वन दो रास्ते फिल्म का गाना जो भाइयों बहनों उस साल गीतमाला में पायदान नंबर एक पर था। तो सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 89.6 पुरानी जीन्स विद चारों ओनली

याद कर रहे हैं आज हम राज खोसला साहब को। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। द ब्रिलियंट आइकॉनिक डायरेक्टर जो अपनी नॉर डार्क फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन फिल्मों के म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं और एक और चीज के लिए जाने जाते हैं कि उनकी फिल्म की कहानियां अक्सर वुमेन सेंट्रिक होती थी। वहीदा रहमान जी का डेब्यू उनकी डायरेक्टेड फिल्म CID से हुआ। हालांकि वहीदा रहमान जैसे उनकी काफी खिटपिट रहती थी, तो भी जिस तरह से उस फिल्म में उनको प्रेजेंट किया गया एज अ वैम्प और फिर बाद में 16 साल मूवी में जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया, दैट वॉज ब्रिलियंट। आगे जाके वो कौन थी, मेरा साया और अनीता ऐसी फिल्मों से उनका साधना के साथ एक आइकॉनिक कोलैबोरेशन हुआ। इन तीन मिस्ट्री फिल्मों ने साधना को मिस्ट्री गर्ल का टाइटल दे दिया। दो बदन जैसी मूवी ने आशा पारेख की जो चंचल चुलबुली हीरोइन वाली इमेज थी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट उन्हें एक सीरियस एक्ट्रेस के तौर पे एस्टैब्लिश किया। फिर दो रास्ते फिल्म में मुमताज का पोर्ट्रेयल, एंड नॉट टू फॉरगेट मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसमें नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और इनकी फिल्मों के जो गाने होते थे उसमें जिस तरह से एक वुमन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता था, दैट यूज्ड टू बी सो वाओ। मुझे इनकी फिल्म मेरा गांव मेरा देश का एक गाना बहुत पसंद है जो मैं आपको सुनाती हूँ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

क्या ही गाना है और क्या ही डांस किया है वहीदा रहमान जी ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये CID फिल्म का गाना है जो वहीदा रहमान जी की पहली हिंदी फिल्म थी, प्रोड्यूस्ड बाय गुरुदत्त एंड डायरेक्टेड बाय राज खोसला। इस गाने का वीडियो अगर आप देखेंगे ना, इसमें वहीदा रहमान जी ने सूट के ऊपर दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जो कि डायरेक्टर के हिसाब से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें वहीदा रहमान जी एक वैम्प के रोल में है और इस गाने में पर्टिकुलरली वो एक विलन को, एक बंदे को ल्योर कर रही है, रिझा रही है। तो डायरेक्टर ने कहा कि दुपट्टा नहीं ओढ़ना है और वहीदा जी अड़ गई कि मुझे तो ओढ़ना है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। यहीं से इन दोनों की, डायरेक्टर राज खोसला और वहीदा रहमान जी की, थोड़ी खिटपिट शुरू हो गई, जो कंटिन्यू रही इनकी अगली फिल्म 16 साल में भी, जहाँ पे एक सीन था जहाँ हीरोइन पानी में कूद जाती है, हीरो उसको बचाता है, फिर दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ दोनों कपड़े चेंज करते हैं। इस सीन में वहीदा रहमान जी का थोड़ा सा ऐसा शोल्डर दिखाया जाना था, उनकी स्किन दिखाई जानी थी, इसके लिए भी उन्होंने साफ मना कर दिया। इस बात पे उनकी और डायरेक्टर राज खोसला की इतनी लड़ाई हुई कि दोनों ने कसम खाली की एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। ये कसम टूटी 26 साल के बाद, जब 1984 में सनी मूवी में दोनों ने साथ में काम किया। खैर, टॉकिंग अबाउट 16 साल, उसका ये गाना क्या गाना है, आइकॉनिक है, कल्ट है, क्लासिक है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

आज पुराने जीन्स पर हम जो गाने सुन रहे हैं उनमें से ज्यादातर डायरेक्टर राज खोसला साहब की फिल्मों से थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज खोसला साहब अपने दोस्त देवानंद के सुझाव पर अपना डायरेक्शन का करियर उन्होंने 1951 में गुरुदत्त साहब को असिस्ट करते हुए एज असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया। अपनी पहली फिल्म उन्होंने 1955 में डायरेक्ट की जिसका नाम था मिलाप। वो इतनी नहीं चली लेकिन उससे अगले साल 1956 में CID फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके बाद इस जॉनर में, डार्क फिल्मों के जॉनर में, राज खोसला साहब ने कमाल कर दिया। उनकी लास्ट डायरेक्टेड फिल्म 1989 की नकाब फिल्म थी। उनकी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने राज खोसला नाम से एक स्टैम्प भी इशू किया था। राज खोसला साहब ने जिस तरह से इंडियन सिनेमा में डार्क फिल्म्स को डिफाइन किया, आगे चलकर बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स ने उनसे इंस्पिरेशन ली। डायरेक्टर्स लाइक महेश भट्ट एंड खुद राज खोसला साहब के बेटे मिलन लुथरिया। इन डायरेक्टर्स की फिल्में देख लें आप, राज खोसला साहब की बहुत सी छाप देखने को मिलेगी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अब आपसे होगी मुलाकात कल यही मिर्ची पर। जाने

विचार बुरा करते हाल, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठा।

अरे आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे।